0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজী বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই নবীন সক্সেনা। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगान

सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका

0: का संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने ₹1,00,000 तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
7: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
8: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
9: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में

0: भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्य के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, गवर्नमेंट सेज देयर विल बी नो चार्जेस एट ऑल फॉर पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांजैक्शंस इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड। Maharashtra government decides to provide soft loans to sugar mills to clear pending dues of farmers for 2025-26 crushing season. Delhi government decides to double monthly incentive for ASHA workers from 3,000 to 6,000 rupees to also build hostels for 10,000 students studying in colleges and universities across the national capital.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি, 12:05 ইংৰাজী বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।

0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariff and expanded trade between two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand's Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas kicked off at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand yesterday with contingents of 600 personnel each from the two countries participating. The exercise is simultaneously being conducted at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan also. Here's a report.
2: The exercise aims to enhance capabilities of both armies to conduct joint military operations in mountainous and semi-mountainous area, with special emphasis on infantry-based operations. During the exercise, the two armies will exchange operational methods and strengthen joint planning and operations. The training will include the use of drones and autonomous system for surveillance and reconnaissance. Modern weapon system will also be demonstrated at the Mahajan Field Firing Range. Experts from both armies will exchange views on emerging technologies and developments related to multi-domain warfare.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. He will hold bilateral talks with Foreign Minister of Bhutan, Leonpo Dien Dungyel. The External Affairs Minister will receive a royal audience with the King of Bhutan and call on the Prime Minister of Bhutan. The Ministry of External Affairs said the visit continues the tradition of regular high-level exchanges and to further strengthen the close ties of friendship and cooperation between India and Bhutan. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of September. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Nikolaevich Mordovichev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honor and pay tribute to fallen soldiers at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow. Saudi Arabia has said

आज के इस प्रसारण में मैं मेनका देव आप सब सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीत संगीत के इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम फिल्मी नगमे का समय होगा 12:38 पर।

समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम तरंग का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का वक्त होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और आज का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा।

फौजी भाइयों, आइए अब आरंभ करते हैं आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म गैंगस्टर से। आवाज है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक के। इसके गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीतकार है प्रीतम।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म गैंगस्टर का ये गीत। प्रस्तुत है अगला गीत केके की आवाज में फिल्म न्यूयॉर्क से। इस गीत के शब्द रचनाकार है संदीप श्रीवास्तव और सुरों से सजाया है प्रीतम ने।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत फिल्म सावरिया से। आवाज है कुणाल गांजावाला, आश्रया घोषाल के। इस गीत को के बोल लिखे समीर ने और संगीत बोध किया है मॉन्टी ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में पेश है अंतिम गीत फिल्म अनजाना अनजानी से, आवाज है राहत फतेह अली खान के। इस गीत के बोल लिखे हैं विशाल डडलानी ने और संगीत बोध किया है विशाल शेखर ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, अब पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको आज फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गीत सुनवाने जा रहे हैं। आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक के। इस गीत के गीतकार है रानी मलिक और संगीतकार है अनु मलिक।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्मी नगमे, पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह कार्यक्रम का आरंभ होगा 12:10 पर। पेश किया जाएगा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत 12:12 पर। कार्यक्रम आज का गीत प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर और कार्यक्रम रागरंग का समय होगा 12:38 पर।

समाचार प्रसारित किया जाएगा 1:05 पर। कार्यक्रम स्वर छाया का समय होगा 1:10 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का वक्त होगा 1:40 पर। समाचार प्रसारित किया जाएगा 2:00 और कल का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है कार्यक्रम फिल्मी नगमे। पेश है पहला नगमा फिल्म जुनून से। आवाज है मोहम्मद रफी के।

0: फिल्मी नगमे कार्यक्रम में पेश है अंतिम नगमा किशोर कुमार की आवाज में फिल्म किनारा से।
1: किशोरदा, आपके साथ गुजारे लम्हे अभी तक न जहन से उतरे हैं न कान से। आपके चाहने वाले आज भी आपको ऐसे ही याद करते हैं जैसे कल ही तो मिले थे, कल ही तो आपको गाते सुना था, बोलते सुना था, हंसी मजाक करते देखा था। हर लम्हा अभी तक वैसे ही जाग रहा है, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

0: Saudi Arabia has said that its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone near Makkah last evening. The spokesperson for the Coalition Forces to Support Legitimacy in Yemen, Major General Turki al-Maliki, described the incident as the second attempted Houthi attack on Makkah. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Benchmark domestic indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. Sensex rose 361 points to 74,364. And that's the end of this news bulletin.
1: समाचार के बाद आप सब सैनिक भाइयों का स्वागत है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, अब से 1:40 तक आप ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे 529.1 मीटर पर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है कार्यक्रम तरंग। इस कार्यक्रम में हम आपको आज अभिनेता ऋतिक रोशन पर फिल्माए कुछ गीत सुनवाने जा रहे हैं। पेश है पहला गीत काबिल फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

ऋतिक रोशन एक प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता है। उनके पिता राकेश रोशन और माता पिंकी रोशन हैं। उनका जन्म 10 जनवरी 1974 में हुआ था। उन्हें विभिन्न प्रकार के चरित्र और नृत्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। प्रस्तुत है अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मिशन कश्मीर से।

ऋतिक रोशन ने 1980 के दशक में कई फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में संक्षिप्त भूमिका निभाई और बाद में उनके पिता के कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका वाली फिल्म कहो ना प्यारे काफी सफल रही, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। सुनते हैं अगला गीत कहो ना प्यारे फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरंग। इस कार्यक्रम में हम आपको आज अभिनेता ऋतिक रोशन पर फिल्माए कुछ गीत सुनवा रहे हैं। उनकी कुछ फिल्में जैसे कोई मिल गया, धूम, क्रिश, जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आदि बेहद सफल और लोकप्रिय फिल्मों में गिना जाता है। पेश है अगला गीत फिल्म कोई मिल गया से, आवाज़ें उदित नारायण और चित्रा के।

ऋतिक रोशन को 6 फिल्म फेयर और कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। पेश है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जोधा अकबर फिल्म से सोनू निगम और मधुश्री की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको आज कुछ बांग्ला गीत सुनवाने जा रहे हैं। पेश है पहला बांग्ला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में एल्बम नतून परिचय से।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम में हम आपको आज कुछ बांग्ला गीत सुनवा रहे हैं। पेश है अगला बांग्ला गीत एल्बम पहाड़ी झरना से। आवाज है अलका यज्ञिक के।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और बप्पी लहरी की आवाज में ये बांग्ला गीत। पेश है इस कार्यक्रम का अंतिम बांग्ला गीत आशा भोसले की आवाज में एल्बम बोड़ो आशा करे एसेछि से।

0: did not cause any major damage. The conduct was in direct contravention of the agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troops movements of April 1991. The ministry asked the Chargé d'Affaires of Pakistan to convey to the concerned Pakistani authorities the need for all military units to observe due care and respect the provisions of the relevant agreements between the two sides in order to prevent any such incidents in future. This is Akashwani giving you the news.
1: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
0: Delhi has been ranked top performer in states and union territories in electric mobility adoption as per the India Electric Mobility Index IMI 2025. The index was released by the Niti Aayog in New Delhi today, which outlines both the policy framework and implementation outcomes for e-mobility at the subnational level. After Delhi, the other top performing states and UTs are Maharashtra, Karnataka, Chandigarh and Goa. This is the second edition of the index and it measures the progress of states and union territories in achieving their electric mobility goals. Speaking at the release of the index, Niti Aayog member Rajiv Gauba said that transition to electric mobility is an economic, environmental and a strategic imperative to the ambition of Viksit Bharat by 2047.
2: Globally, there is a shift towards electric mobility, and by 2040, it is estimated that 40% of all new car sales will be electric. Therefore, our automobile industry also has to make a shift in sync with these global trends if we are to ensure that this kind of employment for our workforce and as a growth driver, automobile sector remains where it is today.
0: A central team led by Union Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan is visiting flood-affected areas of Bihar today to assess the situation. Chief Minister Samrat Chaudhary and senior state government officials are accompanying the team. Here's a report.
3: The team visited flood-hit areas of Maner and Danapur in Patna district. Shri Chauhan and Chief Minister Samrat Chaudhary also travelled by tractor through the flood-affected areas of Raghupur Diyara in Vaishali district to take stock of the situation. The visit is being undertaken on the directions of Prime Minister Narendra Modi. Shri Chauhan will review relief and rescue operations and meet affected farmers and families. Later, he will hold a high-level meeting with the Chief Minister and senior officials in Patna to review the flood situation, disaster management, relief and rescue operations and assistance being provided to affected farmers. The central team will also visit other flood-affected districts including Munger and Bhagalpur to assess the situation. Nidhi Shree for Akashwani News, Patna.
0: The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from tomorrow till the 17th of next month across the country. The key focus areas of the campaign include transforming cleanliness target units and high footfall public places, promoting youth participation in cleanliness and promoting Swachhata Se Samriddhi through circular economy and waste to wealth initiatives. The theme of this year's campaign is Swachhata Me Sehbhag, Swachh Bharat, Viksit Bharat. Here's a report.
4: Launched in 2017, Swachhata Hi Seva campaign has emerged as a cornerstone of the Swachh Bharat mission. The campaign, which is held annually, encourages citizens across the country to step out and take ownership of their surroundings. On 2nd October, which is Gandhi Jayanti, a special cleanliness drive will be organized by the urban local bodies at public places. In addition, tree plantation activities will also be conducted under the Ek Ped Maa Ke Naam initiative. The states have been urged to organize special Swachhata programs on 7th October to mark the completion of Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public service. Under the Swachh Bharat mission, over 12 crore toilets have been constructed across the country, driving a sharp reduction in open defecation and enhancing the safety and dignity of women. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. He will hold bilateral talks with Foreign Minister of Bhutan, Leonpo D. N. Dungyel. The External Affairs Minister will receive a royal audience with the King of Bhutan and call on the Prime Minister of Bhutan. The Ministry of External Affairs said the visit continues the tradition of regular high-level exchanges and to further strengthen the close ties of friendship and cooperation between India and Bhutan. Chief of Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of September. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Mordvikhev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honor and pay tribute to fallen soldiers at the tomb of the unknown soldier in Moscow. The 22nd edition of the India-US joint military exercise Yudh Abhyas kicked off at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand yesterday with contingents of 600 personnel each from the two countries participating. The exercise is simultaneously being conducted at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan also. Here's a report.
5: The exercise aims to enhance capabilities of both armies to conduct joint military operations in mountainous and semi-mountainous area with special emphasis on infantry-based operations. During the exercise, the two armies will exchange operational methods and strengthen joint planning and operations. The training will include the use of drones and autonomous system for surveillance and reconnaissance. Modern weapon system will also be demonstrated at the Mahajan Field Firing Range. Experts from both armies will exchange views on emerging technologies and developments related to multi-domain warfare. Akashwani News, Dehradun.
0: Saudi Arabia has said that its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone near Makkah last evening. The spokesperson for the coalition forces to support legitimacy in Yemen, Major General Turki al-Maliki, described the incident as the second attempted Houthi attack on Makkah, referring to an earlier ballistic missile incident in 2017. He also warned that the Saudi-led coalition would take necessary measures against further attacks. Meanwhile, the Houthis have denied targeting Makkah. The incident is reported amid a sharp escalation between Saudi Arabia and the Houthis. Yesterday, civil defense of Saudi Arabia also issued alerts and then lifted them in six cities, including Yanbu, its main Red Sea oil port. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme of 2026 is Global Action for a Cooler Planet. Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, today said that India has demonstrated that sustainable economic growth is possible while protecting the environment. He was addressing a program in Mumbai to mark the 32nd World Ozone Day. Mr. Singh said, India has exceeded its targets under the Montreal Protocol without compromising on development. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh, Punjab for today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of light rainfall during the evening today. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions are expected over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया और हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान अब समाचार विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया
7: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके
6: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डी एन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें
6: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

0: श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपये से अधिक के पीटूएम लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपये या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपये प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और

0: पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बू लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवा ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सब सैनिक भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। फौजी भाई, अब पेश है आज का अंतिम कार्यक्रम प्रीतलड़ी। कार्यक्रम में पेश है पहला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म सड़क से।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रीत लड़ी। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बादशाह से।

इस गीत के साथ ही प्रीत लहरी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याओं को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर धड़कन जिंदगी से जुड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। आज का दिन खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हार्ट केयर में सही समय पर सही इलाज कितना महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी आखिर क्या है, दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर कब एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, और आज की आधुनिक चिकित्सा में इन प्रक्रियाओं ने हृदय रोगों के इलाज को किस तरह आसान और प्रभावी बनाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड मेदांता हार्ट केयर सेंटर न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू शिल्पा जी।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू शिल्पा जी।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में, जहां हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे। तो डॉक्टर तरुण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्यों मनाया जाता है?
2: सबसे पहले, जब कार्डियोलॉजी की स्टार्ट हुआ 1950s में, तो लोग डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफीज या पेरिफेरल एंजियोग्राफीज लोग करते थे, लेकिन 1977 को वो दिन आया जिस दिन एंड्रियास ग्रुन्सग्रीन, जो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक में काम करते थे, उन्होंने एक पेशेंट्स में पहली बार बेलून डायलिटेशन किया एक आर्टरी का, जिसको कहा गया है कि दिस इज एंजियोप्लास्टी फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड। तो तब से इसकी शुरुआत हुई, और इसके बाद से इतना ग्रो कर गया कि आज की डेट में कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो भी सिंपल नजर आने लगे हैं।
1: डॉक्टर श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के बाद फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका रहती है?
3: इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बाद फिजियोथेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो मरीज़ को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, ICU में एडमिट रहता है मरीज़, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की भी कई बार संभावना होती है, जिसमें सबसे पहली शिकायत जो होती है वो होता है बलगम का इकट्ठा हो जाना छाती में। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सबसे प्राइम रोल ये होता है कि उनकी चेस्ट में सिक्रीशंस या बलगम है वो ना इकट्ठा हो। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें हम पेशेंट की पोजीशनिंग पे फोकस करते हैं। और हार्ट के प्रोसीजर्स के बाद भी ये होता है कि इंसीजन्स हैं तो इंसीजन लाइंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे खांसना है, कैसे गहरी लंबी सांस लेनी है। तो इस तरह की इंटरवेंशंस जो है वो प्रोसीजर्स के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: लगी लगी है दिल की लगी। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने दिल को स्वस्थ रखा जाए। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। डॉक्टर तरुण, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे, तो पिछले 50-60 वर्षों की अगर हम बात करें तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है?
1: जी, जैसे कि 1950s में हम मानते हैं इसकी शुरुआत हुई, तो स्टार्टिंग में ओनली डायग्नोस्टिक्स, स्पेशली पेरिफेरल डायग्नोस्टिक्स होते थे। 1977 में पहली बार एंड्रियास ग्रुंगर ने ज्यूरिख में एक एंजियोप्लास्टी स्टार्ट की, लेकिन वो सिर्फ बैलून एंजियोप्लास्टी होती थी। तो कुछ सालों तक बैलून एंजियोप्लास्टी चलती रही, लेकिन उसके बाद देखा गया कि जो बैलून के बाद आर्टरी का रिकॉइल होना, क्लोज होना, उसकी काफ़ी टेंडेंसी थी। तो उसके बाद स्टंट्स आने शुरू हुए। तो इनिशियली जो स्टंट्स आए वो बेयर मेटल वाले स्टंट्स होते थे। तो बेयर मेटल स्टंट 10 साल 15 साल के बाद उनमें रीब्लॉकेज आने की शुरुआत हो जाती थी, जिसको कहते थे इंस्टेंट रेस्टेनोसिस। और इसको रोकने के लिए फिर आए ड्रग वाले स्टंट्स, इसको कहते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स। तो उससे रिस्टेनोसिस कम हुआ, स्टंट थ्रोम्बोसिस भी थोड़ा कम हुआ। तो इसके बाद ये देखा गया कि भाई अगर स्टंट की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर बायोवेस्कुलर रिजर्वेबल स्कैफोल्ड्स आए और ड्रग एल्यूटिंग बैलून्स आए। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट रहा। और इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए, ताकि जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या सक्सेस रेट है बढ़ जाए, तो इमेज गाइडेड PCIs आए, जिसमें आप इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी से आप अंदर देखकर वेसल की साइजिंग, डायमीटर, लेंथ, उसको असेस करके एक रीडिफाइंड प्रॉपर आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। फिर इशू आया जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज का, जैसे कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा है या लेफ्ट मेन डिजीज है, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन है। तो उसके लिए फिर कैल्शियम मॉडिफिकेशन डिवाइसेज आए मार्केट में, इसको रोटेशनल एथरेक्टमी बोलते हैं और इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो इससे आप जो कैल्शियम वाली एंजियोप्लास्टीज होती थी या वेसल्स होती थी जिनको आप पहले सर्जरी के लिए भेजते थे, अब वो भी सक्सेसफुली आप अल्ट्रासाउंड से देखकर कैल्शियम कट करके उसमें भी प्रॉपरली आप स्टेंट लगा सकते हैं। तो ये तो हुई एंजियोप्लास्टी। साथ साथ इंटरवेंशन वाली फील्ड, जहाँ पहले सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी, स्पेशली ऐसे केसेस में जो बहुत एल्डरली हो जाते थे, हाई रिस्क हो जाते थे, सर्जन उनको हाथ नहीं लगाते थे क्योंकि टेबल पे डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो अब आया है कि जो वेल्व्स हैं हार्ट के, वो भी हम स्टंट की तरह चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टैवर टैवर। आप जो ऑर्टिक वेल्व, वो भी चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद आया माइट्रा क्लिप, जो माइट्रल वेल्व है उसकी भी हम रिपेयर कर सकते हैं ट्रांसक्यूटेनियसली, यानी कि उसको कुछ बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ ऑपरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्टंट की तरह हम प्रोसीजर होता है, उसमें आप वेल्व को भी ठीक कर सकते हैं, वेल्व चेंज भी कर सकते हैं, वेल्व का रिपेयर भी कर सकते हैं। जो हार्ट में होल्स होते हैं, स्पेशली डिवाइसेस लाइक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDAs, वेस्कुलर क्लोजर, हर चीज़ आप आजकल इंटरवेंशन से कर सकते हैं। और ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। कुछ प्रोसीजर में तो हम मॉर्निंग में करके 2 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का स्टे रखते हैं।
0: डॉक्टर श्वेता, कि जैसे कि अगर किसी की ट्रीटमेंट हुई है तो उसके बाद एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए?
2: जैसे कि अभी सर ने बताया कि कुछ पेशेंट्स तो बहुत ही अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमल स्टे होता है उनका, और जिनका लॉन्ग स्टे होता है उनके ऊपर बेसिकली हम एक्सरसाइज को फोकस करते हैं, क्योंकि हमने प्रोसीजर्स एक किया है ना, सो फॉर द हेल्दी हार्ट एंड पंपिंग सर्कुलेशंस बेटर इंप्रूवमेंट के लिए, उनके लिए हम स्पायरोमीट्री है जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम 0 पोस्ट ऑप डे के बाद, मतलब लाइक जो भी प्रोसीजर्स हुआ है उसका फर्स्ट डे से ही हम उनका स्टार्ट करा सकते हैं, ताकि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत परेशानी ना डेवलप हो।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: अच्छा, सबसे पहले मैडम ऐसा है, एक कार्यक्रम चलते रहना चाहिए हर दिन
0: जी,
3: और कभी आंख के बारे में, कभी कान के, नाक के बारे में बताने का कष्ट करें।
0: जी जरूर। अब ये बताइए कि आज जैसे कि हमारा चल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपका कोई प्रश्न है तो।
3: जैसे मतलब हार्ट का संबंध बताते हैं कि BPA से होता है, जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है या कम होता है, तो उसके लिए हम कौन सी जांच करें, कि जैसे ECG है, कुछ और जांच है, तो थोड़ा सा इस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे ना? तो डॉक्टर साहब बताने का कष्ट करें
1: जी। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हार्ट डिजीज है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत कॉमन हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, व्यायाम ना करना, स्ट्रेस और फैमिली हिस्ट्री स्पेशली, एंड स्मोकिंग काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर किसी का BP, जैसे आपने ब्लड प्रेशर की बात की, अगर वो अपना BP कंट्रोल में नहीं रखते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो हार्ट अटैक को भी प्रेसिपिटेट करता है, हार्ट फेलियर को भी प्रेसिपिटेट करता है, इवन उससे स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकती है, आईज भी डैमेज हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर एक वो रीज़न है जिससे आपके मल्टीपल सिस्टम डैमेज हो सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और जो उसके आसपास हो तो उसको इमिडिएटली फर्स्ट एड क्या दें?
1: जी, अगर किसी को अगर हार्ट यूजली पेन होता है, अगर पेन कहाँ हो सकता है, आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट में हो सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में हो सकता है, एपिगेस्टियम लाइक जो पेट वाली जगह वहाँ भी हो सकता है, ये पेन आपका लेफ्ट अपर लिम में जा सकता है, लो जॉ तक जा सकता है, साथ में चोकिंग फीलिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, पर्स्पिरेशन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, और कुछ कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं। अगर ऐसा अगर आसपास देखते हैं किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है और ये पेन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश करें अगर आपके घर में डिस्प्रिन की टैबलेट है वो उसको एक दे दीजिए, अगर आपके घर में स्टैटिन्स है जो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाली टैबलेट है वो दे सकते हैं, और एक सॉर्बिटेट की टैबलेट आती है जिसको जीभ के रखने के लिए नीचे हम बोलते हैं, वो टैबलेट जीभ के नीचे रखें, लेकिन घर में वेट ना करें, तुरंत जाके नियरेस्ट सेंटर में जाके ECG जरूर करवाएं, क्योंकि ECG ही है जो डिफाइन करेगा कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए।
0: डॉक्टर श्वेता, अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या वो एक्सरसाइजेस कर सकता है प्रिकॉशन के तौर पे अपने आप को फिट रखने के लिए?
2: देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ वार्निंग साइंस हैं, अगर इस तरह का चेस्ट पेन या इस तरह की परेशानियां लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने आप से कोई भी एक्सरसाइज ना करें, सलाहकार की मदद से अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, आपने कार्डियोलॉजिस्ट को पहले दिखा लिया है, अगर वो एडवाइजेबल है कि आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो उसके बाद हम एक प्रॉपर रिजीम उनका तैयार करते हैं, प्रोटोकॉल होता है जिसके अंतर्गत हमें उनका जो HR मैक्स है

0: वो मेजर करते हैं, हम उनके सैचुरेशंस भी चेक करते हैं, बीपी जो बेसिक मॉनिटरिंग है पैरामीटर्स की वो मॉनिटर करके एक हम 6 मिनट वॉक टेस्ट भी उनका करते हैं। जब हमें लगता है कि पैरामीटर्स में उनको डिज़निया, सांस लेने में दिक्कत या पैल्पिटेशन की शिकायत अगर हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग उनका एक कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बनाया जाता है 6 से 8 हफ्तों का। तो वो उनको फिर हम उस तरह के एक्सरसाइजेस अपनी गाइडलाइंस में सिखाते हैं। और जब हमें लगता है कि मरीज़ अच्छे से बहुत ही विदाउट एनी सिम्टम्स कोई उनको नहीं आ रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वो कर पा रहे हैं, तो फिर हम उनको होम बेस्ड एक्सरसाइजेस के सलाह देते हैं।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हाँ नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरा नाम सर राजिंदर है, मेरी एज 75 है। तो मेरा स्टंट डला था 2011 में, लेकिन मेरा हार्ट फंक्शन 30 पे है और ये जो है बलगम भी बहुत बनता है। तो ये हार्ट फंक्शन कह रहे हैं कि बढ़ नहीं पाएगा और कभी कहते हैं ICD इम्प्लांट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या है ICD इम्प्लांट।
3: राजेंद्र जी, ऐसा कहा जाता है कि टाइम मसल है, कहने का मतलब अगर हार्ट अटैक आने के बाद आप जितना डिले करते हैं उतना हार्ट में डैमेज आना शुरू हो जाता है। अगर आप 12 घंटे के बाद जाते हैं तो उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। गोल्डन आर हमेशा ही, चाहे वो ब्रेन का हो या ट्रॉमा हो या हार्ट हो, उसको 1 आर ही बोला जाता है ऐसे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आजकल हमारे पास काफ़ी मेडिकेशंस आ गई हैं जिसको हम दे सकते हैं और ट्रायल के तौर पर कि उसमें देख सकते हैं कि आपका हार्ट की पंपिंग कितनी इम्प्रूव हुई है। इसको हम पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर बोलते हैं और काफ़ी इसमें हमारे पास न्यू मेडिकेशंस हैं। तो आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली आई तो अपने नियरेस्ट जाके किसी कार्डियो स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट किया जाए और आपकी हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव किया जाए।
1: डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैसेज भी आया हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। डज द CPR वर्क्स एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन गेट्स हार्ट अटैक? व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक टू गिव इट?
3: सी, देयर आर टू थिंग्स, वन इज हार्ट अटैक एंड वन इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या आता है कि जो इससे बेसिकली वेस्कुलर फिनोमिना, इसमें आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आने से उसमें ब्लड का जो प्रभाव है वो रुक जाता है, उसमें पेन होगा, आपको स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी। तो और जो कार्डियक अरेस्ट है ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसमें क्या है कि आपका जो हार्ट है वो तुरंत काम करना बंद कर देता है, तो इसमें पेशेंट इमीडिएटली कोलैप्स कर जाता है। तो जो पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं उसमें CPR की ज़रूरत आती है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास आपने देखा कोई जिम में कोलैप्स कर गया, कोई स्टेज पे कोलैप्स कर गया, तो आपको जो भी कोई कोलैप्स करता है तो मेक श्योर करना है कि आप उसको एक फ्लैट सरफेस पे पहले लेटाएं, मेक श्योर करें कि उसकी जो हार्ट है या पल्स है वो नहीं आ रही है इमीडिएटली, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन फ्यू सेकेंड्स आपको एसेस करना है, फ्लैट सर्फेस पर लेटाना है और उसको CPR देना है। CPR देने के लिए आप उसका जो लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट है उसमें अपनी हथेली रखेंगे दोनों इंटरलॉक करके, और आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको रैपिडली प्रेस करें, एटलीस्ट जो डेप्थ ऑफ आपका प्रेशर होना चाहिए 3 to 5 centimeters के आसपास उसमें कंप्रेशन आना चाहिए, और 1 मिनट में कम से कम 100 बार आपको करना है। तो इसकी साइकिल्स एटलीस्ट आपको 30 to 60 seconds के लिए देनी है, फिर रिस्पांस चेक करना है कि भाई उस कि पेशेंट कॉन्शियस हुआ नहीं हुआ, उसने कुछ रिस्पांस दिया है ना। और करने से पहले भी आपको मेक श्योर करना है कि उसकी चेस्ट मूव कर रही है नहीं कर रही है, या नॉस्ट्रल फ्लेयर कर रही है नहीं कर रही है, या उसमें कोई कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, CPR तुरंत स्टार्ट करना है, और इस CPR को करते हुए आपको इमीडिएटली हेल्प के लिए बोलना है ताकि इमीडिएटली एम्बुलेंस आ पाए, और आपको तब तक CPR करते रहना है या तो कोई आपकी हेल्प ना आ जाए या पेशेंट का रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो CPR हमेशा ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन CPR देने से जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, अगर आप CPR देते हैं तो उसे सर्वाइवल एटलीस्ट 50 to 60% बढ़ जाता है। सर्वाइवल नहीं, CPR नहीं देने से सर्वाइवल नियरली जीरो रहता है और उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं CPR से क्या होता है कि वाइटल ऑर्गन में आपका जो ब्लड है वो जाता है स्पेशली ब्रेन में, तो जो हाइपोक्सिक डैमेज है वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं और सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे, बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण और डॉक्टर श्वेता। एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, माई सेल्फ इज सौरभ सिंह चौहान फ्रॉम लखनऊ। माई क्वेश्चन इज, मेरे फादर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था दिसंबर 2024 में, दो स्टंट पड़े हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई, और क्या मेडिसिन लाइफ टाइम चलती रहेगी हार्ट की?
2: जी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो मेडिकेशंस आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको रेगुलरली लेना है आपको। कुछ मेडिकेशन 6 to 12 months के बाद हम कम करना शुरू करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है और पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं। अगर आपकी हार्ट की पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल है तो आप ग्रेजुअली अपनी रूटीन एक्टिविटी में जा सकते हैं, और अपना लाइफस्टाइल का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफस्टाइल को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपको जो चांसेस है रीब्लॉकेज का वो नहीं आएगा। उसमें क्या कर सकते हैं, अपना वेट कंट्रोल करके रखें, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके रखें, अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखें, रेगुलर अपने आप को आप वॉक वगैरह करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल करें। रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग से भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप 30 to 40 minutes डेली ब्रिस्क वॉक करते हैं एटलीस्ट 5 days इन ए वीक, वो भी सफिशियंट रहता है। और मेडिसिंस लेना और जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको रीब्लॉकेज या री इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर 3 to 6 months में जाके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि अगर कुछ मेडिकेशंस ऑल्टर करनी है या चेंज करनी है वो कर सकें।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर्स को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही निवेदन कर रहा हूँ। मेरा एक मिथ है और 3 सवाल है। तो पहला मिथ जो है उसमें है वो ये है कि यदि आपको हार्ट में ब्लॉकेज है और आप रनिंग करते हैं स्पीड से, तो मैंने सुना है कि आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज है वो जो है खुल जाते हैं, तो ये दूर करें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि किसी इंसान को थायराइड है या टॉन्सिल है, तो क्या इसका कोई रिलेशन है हार्ट से? तीसरा सवाल मेरा ये है, 3 दिनों लीवर में मेरे जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे और जो है गैस ही बनती है, तो क्या इसका भी कोई थायराइड से उस हार्ट से कोई फ्यूचर में मतलब कोई नुकसान होने की संभावना है? और चौथा सवाल मेरा ये है कि जब भी कभी अचानक आपके सामने या तो लॉइन या स्नैक्स आ जाए तो अपने आप हाथ पैर जो है इससे पसीना आने शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो क्या इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी
2: जी। अगर आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होना शुरू होती हैं, है ना, तो उससे कॉरोनरी फ्लो भी बढ़ता है। अगर कुछ क्रिटिकल ब्लॉकेजेज है तो जो नेचुरल बाईपास वाले चैनल्स हैं वो भी ओपन होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ओवर एग्जर्ट करते हैं तो उसमें डैमेज आने के चांसेस भी आते हैं। थायराइड प्रॉब्लम और हार्ट का पुराना रिलेशन है। थायराइड प्रॉब्लम से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो सकता है, आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, है ना, तो इनको अगर थायराइड को कंट्रोल करके रखना जरूरी है ताकि जो हार्ट की गति है और ब्लड प्रेशर वो भी आपका कंट्रोल रह सके। थायराइड प्रॉब्लम्स आपका डिसलिपिडीमिया लिपिड एबनॉर्मलिटी को भी बढ़ाती है, तो जब भी थायराइड प्रॉब्लम्स हो तो इन चीज़ों को चेक करना, स्पेशली आपकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल। लीवर प्रॉब्लम्स, आजकल कहा जाता है कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटिक लीवर डिजीज MASLD, तो लीवर में क्या होता है कि फैट एकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जो MASLD होती है इसका हार्ट से भी रिलेशन है, क्योंकि जो फैट डिपॉजिट आपका लीवर में है वो फैट डिपॉजिट आपकी जगह जगह जाकर हो सकता है, स्पेशली ब्लड वेसल्स में, जो हार्ट की वेसल्स भी हो सकती हैं, ब्रेन की भी हो सकती है, किडनीज की भी हो सकती हैं, और जो आपके पास काफ़ी बार गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं वो मिमिक करते हैं आपको हार्ट अटैक के, तो जो भी पेन होता है उसको ये सोच के, क्योंकि काफ़ी बार पेन जो होता है हार्ट का पेन ये हमेशा आपको सीवियर पेन नहीं होगा, काफ़ी बार ये सिर्फ हैवीनेस होगी या प्रेशर जैसा फील होगा या आपको बर्निंग फील होगी, तो जो प्रिकिंग वाले पेन होते हैं जिसको आप फिंगर से लोकलाइज कर सकते हैं यूजली वो हार्ट के पेन नहीं होते हैं, लेकिन अगर बर्निंग पेन भी अगर आपको हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक नहीं मानना है, जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है ताकि आपका प्रॉपर ECG हो सके, आपका प्रॉपर चेकअप हो सके। जो 90% लोग इग्नोर करते हैं वो अपने हार्ट अटैक के पेन को गैस्ट्रिक पेन समझते हैं और घर में रहते हैं, और जब वो लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका होता है और डैमेज हो चुका होता है, तो इसलिए नेगलेक्ट नहीं करने अपने सिम्टम्स।
1: डॉक्टर श्वेता, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं?
4: जी, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ऑलरेडी मतलब हो चुकी है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल मॉडिफिकेशन में चली जानी चाहिए। जैसे कि एडवाइजेबल होता है कि जो कारण है, हमने अभी बात करी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं हार्ट अटैक आने के लिए,

0: ओबेसिटी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स उनके हैं रहे हैं तो आपको प्रिवेंटिव तौर पे, मतलब आगे उसके प्रिवेंशन करने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, मोबाइल रहे. तो एक सेट रिजीम हमें एक्सरसाइज का जो है वो बताना पड़ता है. वो कार्डिक रिहैबिलिटेशन में बेसिकली उसी पे फोकस किया जाता है, जैसे कि रिकमेंडेड है WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज हमारा पर वीक. जैसे अगर हम इसको टुकड़ों में बांटें तो 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार हफ्ते में करें, बहुत ज़रूरी है ये करना. इसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल भी बना देते हैं जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिसमें बॉडी का थोड़ा लचीलापन वाली जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी मांसपेशियाँ तनाव में है, टाइट है, उनकी स्ट्रेचिंग. देन फिर हम स्ट्रेंथनिंग पे आते हैं जिसमें काफ मसल्स जो कि हमारा सेकेंडरी हार्ट है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की हम बात करते हैं, वो सिखाई जाती है मरीज को. और एरोबिक एक्सरसाइजेज में जो कि सबसे बेस्ट है, एक सिंपलर एक्सरसाइजेज है जैसे वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना. इसके अलावा आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक और 10 मिनट की साइकिलिंग का प्रोटोकॉल भी हम मरीज को बता सकते हैं अगर जो इससे अफेक्टेड है. तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अगेन हम फिर बात करते हैं खान पान के ऊपर आएंगे कि खान पान की हैबिट्स उनकी अच्छी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो चाहिए, आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना. तो इस तरह की सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कस्टमाइज स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बनाता है. तो कार्डिक रिहैबिलिटेशन बेसिकली इसी पे फोकस रहता है हमारा.
1: डॉक्टर तरुण, जैसे कि हम हार्ट की बात करें तो क्या आजकल बिना ओपन हार्ट सर्जरी के लिए इलाज भी संभव है?
2: बिल्कुल, आज की डेट में जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी रिक्वायरमेंट तो लेस देन 5% रह गई है किसी भी उस कंडीशन में. तो जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज है, हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइसेज आ गए हैं जो केसेस पहले बाईपास के लिए जाते थे उसकी सिंपल वे में एंजियोप्लास्टी और अच्छे रिजल्ट के साथ पॉसिबल हैं. जो पहले ओपन जो होल्स होते थे बच्चों में उसमें से भी ज़्यादातर आजकल डिवाइस क्लोजर से हो जाते हैं. और जो वेल्व चेंज होते थे, वेल्व्स की प्रॉब्लम आती थी, तो वो भी आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं उसके जरिए हम वेल्व्स को भी चेंज कर देते हैं और रिपेयर कर देते हैं. तो जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की फील्ड है वो इतना डेवलप कर गई है कि जो बाईपास की रिक्वायरमेंट है वो बहुत रेयर केसेस में, कम से कम केसेस में रह गई है, जिसमें एंजियोप्लास्टी फिजिबल नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है आज की डेट में.
1: तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में?
2: जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है वो हम जो वेसल्स होती है उसके जरिए, तार के जरिए और कैथेटर के जरिए जाके हार्ट में जाकर उसको हुक कर उसको हम प्रोसीजर में एंजियोग्राफी, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसको एंजियोग्राफी बोली जाती है, और जिसमें हम इंटरवेंशन करते हैं या बलून डायलिटेशन करते हैं या स्टेंट लगाते हैं उसको एंजियोप्लास्टी बोली जाती है. तो यूजुअली या तो हम हार्ट की जो रेडियल आर्टरी होती है उसके जरिए जाके कर सकते हैं, जो फेमोरल आर्टरी उसके जरिए जाके कर सकते हैं. जो बाईपास सर्जरीज होती है उसमें पूरा काटा जाता है आपकी चेस्ट को, उसमें इंसीजन आता है, उसमें रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और उसमें रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये डिफरेंस है कि जो एंजियोग्राफी या इंटरवेंशन वाली चीज़ें हैं उसमें पेशेंट का कंफर्ट ज़्यादा होता है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है और बिना पेन के हो जाती है, मिनिमल पेन के साथ. जो बाईपास सर्जरी उसमें रिकवरी टाइम भी ज़्यादा है, इंसीजन भी बड़ा है और उसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी मुश्किल होती है.
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर. हेलो.
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
3: मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सुजाता सिंह
1: जी. बताइए क्या प्रश्न है आपका.
3: मैम, मेरे को प्रॉब्लम होता है जैसे मैं रास्ते चलती हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे सांस फूलती है ज्यादा और थकान ज्यादा हो जाता है.
2: जी, आपकी उम्र कितनी है?
3: 54-55 के लगभग है सर.
2: जी, देखिए जो सांस फूलना है ना, इसको भी हम एक कार्डिक सिम्टम्स ही मानते हैं, क्योंकि काफी लोगों में वो पेन नहीं होता है, वो सांस फूलना होता है. स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, डायबिटिक्स में, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है, इनको पेन नहीं होगा, इनको सिर्फ सांस फूलना जैसा फील होगा. लेकिन सांस फूलना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके और भी कॉजेज होते हैं. जैसे फीमेल्स में बहुत कॉमन कॉज है कि ब्लड का कम होना है, हीमोग्लोबिन का कम होना. तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उससे भी आपको सांस फूल सकता है. अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपका सांस फूल सकता है. अगर आपने अपना वेट ज़्यादा बढ़ा रखा है तो उससे भी आपको सांस फूलना हो सकता है. और अगर आप की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर फिर आप सडनली वॉक करना शुरू करते हैं स्टे, तो उसमें भी सांस फूलना हो सकता है. लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं हैं और आपका छोटी मोटी एक्टिविटी में सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था, तुरंत जाके चेकअप करवाएं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ECG को, और एक एक्सरे भी करवा सकते हैं ताकि पता लगे कि जो ये सांस फूल रहा है उसकी वजह क्या है.
1: डॉक्टर श्वेता, अगर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो उन्हें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए?
0: अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको, अगर उसको, जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर उसको रेस्टिंग डिस्निया भी है, अगर बैठे बैठे भी सांस फूलने की शिकायत आ रही है.

0: या सांस लेने में तकलीफ हो रही है अगर इस तरह का है, या बहुत ही एक्सट्रीमली फटीग फील करते हैं वो, उनको लगता है कि हम हर वक्त थकान या थका थका महसूस करते हैं। और तीसरा मेजर सिम्टम अगर वो कहेंगे कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादातर सूजन बनी रहती है टखने के आसपास या पैर की पंडलियों के आसपास, तो ऐसे अगर साइंस अगर आ रहे हैं तो उनको हम अवॉइड करते हैं, मना करते हैं कि आप इस अभी एक्सरसाइजेस करने की सिचुएशन में नहीं हैं। और बहुत ही जेंटल वॉक हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप सिंपल वे में घर में, जैसे घर में ही टहलें या थोड़ा बहुत आसपास अगर टहल सकते हैं तो उतना टहलने की एक्सरसाइज करें। ब्रिस्क वॉक ना करें क्योंकि अभी ये थोड़े से अलार्मिंग साइंस है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है, इस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप एक बेसिक रूटीन की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। आप जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हो, सारे जोड़ों की एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे हमने अभी पहले बात करी थी, तो एरोबिक एक्सरसाइजेज को भी आप अच्छे से, जैसे ब्रिस्क वॉक है, आप सैर करें, सुबह शाम की सैर करें, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं कि थोड़ा सा हम स्टेयर्स भी पेशेंट्स को चलने के लिए एडवाइस करते हैं कि जैसे 10 से 5 फ्लाइट्स आपने ऊपर लिया नीचे उतरे, है ना, ताकि फिर हम उसका रिकॉर्ड करेंगे कि इनको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही, इनका हार्ट रेट मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, इनके ब्लड प्रेशर में कितना वेरिएशन आता है या सैचुरेशन इनकी कितनी डिस्टर्ब होती हैं। तो पूरा एक एनालिसिस करके, पेशेंट की पूरी जाँच करके ही हम उनको बताते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेस आपको करनी है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं गाजियाबाद से मैम, मेरा नाम कमलेश चौधरी है।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी मैम, जैसा अभी डायबिटीज वालों को ज्यादा रहता है रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक होने का, तो क्या क्या प्रिकॉशन रखे, क्या मतलब नॉर्मल जो चेकअप भी बीच में कराते रहे ताकि कुछ रिस्क फैक्टर कम किया जा सके डायबिटीज के लिए, जैसे एज के हिसाब से क्या अलग अलग फैक्टर है रिस्क फैक्टर, जैसे 30 से 40 या 40 से 50, 50 से 60 है किसी को डायबिटीज, तो वही जानना चाह रहे हैं। जी सर, तो मतलब क्या क्या जांच वगैरह कराते रहे सर, कि मतलब कि थोड़ा सा अवेयर रहे, कहने का मतलब।
3: जी, जो डायबिटीज है वो एक सबसे स्ट्रांगेस्ट रिस्क फैक्टर है हार्ट प्रॉब्लम का। डायबिटीज़ को हम एक CAD रिस्क इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, कहने का मतलब है कि इसको डायबिटीज़ हम मान के चलते हैं कि इसको हार्ट प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी है या इक्विवेलेंट है। तो इसमें ज़रूरी है कि तो शुगर को आप प्रॉपर कंट्रोल करके रखें, और जो इसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करके रखना है। तो शुगर की दवाइयाँ तो आपने लेनी है कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट भी इसमें देनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो इसका ध्यान रखना है। डायबिटीज़ पेशेंट में चांसेस होते हैं वेट गेन के, तो आप कोशिश करें कि वेट गेन ना हो। थर्ड चीज़, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, तो हाइपरटेंशन अगर है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल रखें। तो क्या क्या आपको चीज़ें को ध्यान रखना है, एक तो स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांगेस्ट रिस्क फैक्टर स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में, जो आपने बात की कम एज में स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो यंग एज में हार्ट अटैक आते हैं स्पेशली हम बात करें 20 से 30 साल के बीच में, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो उनमें जेनेटिक टेंडेंसीज हैं, उसको देखने के लिए आप लिपिड करवा सकते हैं, जैसे आप 18 ईयर्स के होते हैं कि लिपिड आपका ठीक है या नहीं है, अपना BP चेक करवा सकते हैं, और अगर आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है तो और इन्वेजिव टेस्ट के लिए जा सकते हैं, जैसे कि ECG, ECO, TMT। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो आप कोशिश करें कि इसका हर 3 to 6 मंथ्स में आप चेकअप करवाएं, ताकि इसका जो लेवल्स है आप उसको कंट्रोल करके रख सकें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ना शुरू होती है तो हार्ट के इंसिडेंस भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो 50% हार्ट के पेशेंट्स हैं उनकी एज 50 ईयर से कम होती है, और नियरली 30 to 40% की एज 40 ईयर से कम होती है। तो आपको ये वेट नहीं करना है कि मुझे यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, तो जो आपको कंट्रोल करना है या जो आपको लाइफस्टाइल करना है वो आपको अर्ली एज में करना पड़ेगा, ताकि जो मिडल एज है उसमें आपको हार्ट डिजीज डेवलप भी ना हो।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और दोनों डॉक्टरों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, ये लिखते हैं आज के युवा में हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो पहले बुजुर्गों में होती थी, तो आज के युवाओं को खान पान 24 घंटों की टाइम मैनेजमेंट के बारे में कैसा रखना चाहिए, क्या सलाह देंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
3: जी, ऐसा है कि जैसे कि जो हमारी पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, ये हम बोले एशियन पॉपुलेशन, ये पहले से ही हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज है। हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एटलीस्ट 1 to 2 डिकेट्स हार्ट प्रॉब्लम पहले ही जल्दी आ जाती है, अगर वहाँ 60 to 70 ईयर्स की एज में आती है तो यहाँ 40 to 50 ईयर्स की एज में आ जाती है। और इसमें प्रमुख कारण ये है कि एक तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं एज ए कंट्री, दूसरा जो हमारा खान पान है वो भी कहीं ना कहीं हमारी डाइट ऐसी है कि जो एथ्रोजेनिक है, या हम बोलें कि वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और वेट गेन को बढ़ाती है। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करके रख सकते हैं, विद और विदाउट मेडिकेशन वो बहुत ज़रूरी है। वेट, वेट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ओबेसिटी, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का फैक्टर्स है ये काफ़ी लोग नहीं करते, लेकिन स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिससे कि हार्ट अटैक आ सकते हैं। क्योंकि जो प्लाक्स हैं, कि जैसे मैंने बताया कि जो इंडियंस की डाइट है, जो जेनेटिक टेंडेंसी है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को हम प्लाक्स बोलते हैं, जो आर्टरी में डिपॉजिट्स होते हैं, अगर ये रप्चर कर जाते हैं तो उसको हार्ट अटैक आता है। ये प्लाक हो सकता है 2% हो, 4% हो, 5% हो, 20% हो। अब पोस्ट कोविड एरा में ये देखने को मिला है कि जो ये प्लाक रप्चर करने की टेंडेंसी है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है। तो या तो हो सकता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में परसिस्ट कर रही हो, या हमारा लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हो गया पोस्ट कोविड एरा में। तो हमें कोशिश करनी कि हम अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें, क्योंकि कोविड को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना रिस्क प्रोफाइल कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये 9 रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो एक स्टडी थी इंटर हार्ट स्टडी, जो मोर देन 45 कंट्रीज़ में हुई थी, इसमें सब लीनियज के लोग थे। इसमें देखा गया कि अगर आपने 9 फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए, स्पेशली आपकी बॉडी वेट, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल्स, अगर ये आपने फैक्टर स्ट्रेस, ये अपने साइकोसोशल फैक्टर्स, ये अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो अपना हार्ट डिजीज का इंसिडेंस 90% तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी कि जो जेनेटिक टेंडेंसीज है हार्ट अटैक आने की, वो सिर्फ लेस देन 5% है, स्पेशली जिसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो वो लेस देन 5% है। ओल्ड एल्डरली एज, तो कुछ फैक्टर्स जैसे मैंने कहा कि आप चेंज नहीं कर सकते। एक तो हो गया एल्डरली, जिसकी एज बढ़ती जा रही है उसमें टेंडेंसी आएगी। मेल सेक्स, मेल सेक्स में हार्ट प्रॉब्लम्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है। ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे जो 9 फैक्टर्स हैं आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना रिस्क लेस देन 5% मिला सकते हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास ये है फ्रॉम समर्थ फ्रॉम बेंगलुरु, ये लिखते हैं, इट इज़ सीन दैट मैनी पीपल आर गेटिंग कार्डियक अरेस्ट इन जिम, सो हाउ मच सेफ इट इज़ टू डू वर्कआउट इन जिम, विच वर्कआउट रिजाइन वी शुड फॉलो?
3: जी, देर आर फ्यू थिंग्स। जिम में कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट है, मैंने क्या कहा है कि उसकी दो वजह होती हैं, एक तो आपकी हार्ट अटैक हो सकता है, एक मिडल एज लेट एज में जो कार्डियक अरेस्ट आने का प्रमुख कारण होता है वो हार्ट अटैक ही होता है। लेकिन अगर वो बच्चों में आ रहा है तो उसमें और भी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अर्दमियाज हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं। जो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, स्पेशली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये धीरे धीरे आना, ऐसा नहीं होता बचपन में ही आ जाती है। जो हार्ट की मसल की थिकनिंग है ये ग्रेजुअली आती है, किसी भी टाइम आ सकती है, आफ्टर 18 ईयर्स, हो सकता है 25 ईयर्स की एज में आए, 30 ईयर्स की एज में। तो जिनको अंडरलाइन कार्डियोमायोपैथी है जो अनडिटेक्टेड है, अगर ऐसे लोग सडन जिम करना शुरू करते हैं तो इनको हार्ट प्रॉब्लम्स आने के या कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। या जिनको जेनेटिक टेंडेंसीज है हार्ट अटैक आने की, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, वो सडन सिवियर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या जो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इससे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब भी आप कोशिश करें कि आप जिम ज्वाइन करते हैं और आप सोचते हैं कि आप हैवी एक्सरसाइजेज या उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले अपना कार्डियक चेकअप जरूर करवाएं, जिसमें एक ECG, इको और एक TMT और कुछ नेसेसरी ब्लड टेस्ट जैसे कि लिपिड शुगर के टेस्ट होना जरूरी है।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर। एक मैसेज हमारे पास ये है, लिखती हैं, यह है सरस्वती, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, रांची से। ये लिखती हैं, आई एम डायबिटिक टेकिंग मेडिसिन, नॉट डॉक्टर आर सेइंग यू हैव डेवलप्ड आर्टेरियल फिब्रिलेशन, व्हाट शुड आई डू?
1: जी, एट्रियल फिब्रिलेशन वो बीमारी होती है जिसमें आपकी हृदय गति या आपकी पल्स इरेगुलर हो जाती है। इसमें सबसे जो दिक्कत करता है, एक तो ये आपका, अगर ये रेट को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट फेल कर सकता है और स्ट्रोक आने के चांसेस बनाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो इसके चांसेस, इंसिडेंस एट्रल फिब्रिलेशन के बढ़ते जाते हैं। तो अगर ये काफ़ी टाइम से आप, अगर आपको एट्रल फिब्रिलेशन है, तो कोशिश करें इसका रेट कंट्रोल रखें और कुछ ब्लड थिनर्स लेनी पड़ेंगे आपको, ताकि आपको स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएँ। अगर आपको ये अक्यूटली डेवलप हुआ है तो कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करने की, जिसके लिए हम मेडिकेशंस भी दे सकते हैं और भी हमारे पास मेथड्स हैं। और अगर आप से छुटकारा पाना चाहते हैं परमानेंटली, तो ईपीएस आरएफए प्रोसीजर होता है, इसको करके हम इसको परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है, आपके चैम्बर्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें मेडिसिन से कंट्रोल करें और स्ट्रोक आने के चांसेस को कम रखें।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल महिलाओं में काफ़ी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जैसे इन्होंने भी बताया, तो फिर वो अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?
1: जी, फीमेल्स को नेचुरल प्रोटेक्शन होती है इस्ट्रोजन से। जब तक वो 40-45 या हम बोले कि मीनोपॉज अटेंड नहीं करती हैं, उसके 10 साल के बाद उनको हार्ट प्रॉब्लम्स आने की टेंडेंसी रहती हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कुछ यंग फीमेल्स में भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन सी होती हैं फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स, इनमें डायबिटीज़ हैं, जो स्मोकिंग करती हैं या उनके पार्टनर स्मोक करते हैं, या जिन्होंने अपना वेट काफ़ी बढ़ा रखा है, या कुछ वो हार्मोनल्स प्रिपरेशंस ले रही हैं बच्चा होने के लिए कुछ और वजह से, या जिनकी पहले हिस्ट्रेक्टमी हो चुकी

0: ये जो उनका यूट्रस है वो निकाला जा चुका है, तो वो काफ़ी बार सप्लीमेंट लेना शुरू करती हैं, और काफ़ी बार प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया को भी आज की डेट में हम रिस्क एनहेंसर मानते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो फीमेल्स को ध्यान रखना है कि अपना वेट गेन ना होने दें, अगर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके रखें, अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसीज हैं हार्ट अटैक आने की आपकी फैमिली में, तो उसके लिए अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, और अगर कुछ भी ऐसा निकलता है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो कोशिश करें कि उसको आप कंट्रोल करके रखें। और स्मोकिंग, एक जो देखा जा रहा है कि आजकल फीमेल्स में स्मोकिंग का ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली उनको लगता है कि सिगरेट ना पी के हुक्का स्मोकिंग भी कर सकती हैं, ई सिगरेट पी सकती हैं, ये इक्वली डेंजरस है, कोशिश करें इसका अवॉइड करें।
1: जैसे कि हार्ट ट्रीटमेंट के बाद अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, सारे प्रोसीजर सेफ़ हैं आज की डेट में, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर अपनी मेडिकेशंस लेनी है। अगर आप मेडिकेशन मिस करते हैं, तो अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस के या उसमें क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल शुगर कंट्रोल नहीं रखा, तो लॉन्ग टर्म में इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिस्टेनोसिस, तो स्टेंट में रीब्लॉकेज हो सकती है या बाकी नई जगह ब्लॉकेज आ सकती है। और अगर जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, आपकी मोटापा और स्ट्रेस, और अगर आपने अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ली है, तो सारे के सारे फैक्टर्स अगर अनकंट्रोल्ड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से हार्ट अटैक आने का, री ब्लॉकेज होने का, या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करें कि मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल्स, अगर ये दो चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली, तो री प्रोसीजर री इंटरवेंशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
1: डॉक्टर श्वेता आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिजियोथेरेपी केवल बीमारी या प्रोसीजर के बाद ज़रूरी है, या प्रिवेंशन में भी इसकी भूमिका है?
2: देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम हमेशा ये बोलते हैं, तो प्रिवेंटिव तो हमेशा बेटर रहता है और बेस्ट ही रहता है। थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, इस बार हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो 8th of September को मनाया गया था, उसमें हमारा इस ईयर का जो थीम था वो यही था कि प्रिवेंशन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। सो बेसिकली हमने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंप्स और स्पेशल ओपीडीज लगाई थी, जहाँ पे हमने पेशेंट एजुकेशन किया, हमने स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट्स लेवल पे एजुकेशन दिया, टीचर्स लेवल पे एजुकेशन दिया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जाके वहाँ के स्टूडेंट्स को भी एजुकेट किया कि वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीज़ को मतलब जो जिनकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो बेसिक हमारा फोकस इन्हीं पे था कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल जो है, अगर हम उनको उसमें बदलाव लाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट और एक्सरसाइजेस के थ्रू होती है। लेकिन सेकेंड थिंग, हमारा डाइट कैसा है, हम खान पान में किन चीज़ों का परहेज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे खाने में जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जंक फूड है, एक्सेस फैट है, तो वो हमारी हार्ट की कंडीशंस को ना बढ़ावा दें, है ना। इसके अलावा हमारा जो नॉर्मल रूटीन में हम बात करते हैं कि हमारा मोटापा, जो ओबेसिटी है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए हम किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इन सब चीज़ों की हम एजुकेशन देते हैं। और प्रिवेंटिव लेवल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस भी एक कारण है, रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे रूटीन को बहुत ही कामली करें, और एक्सरसाइजेज में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, सांस लेने का तरीका, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जिससे हम स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। और एक बहुत इग्नोरेंट फैक्टर है, शायद लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, या उनका एक रूटीन ही बन चुका है, देरी से सोना या स्लीप डिस्टर्बेंसेस आना, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपके हार्मोन लेवल पे वर्क करता है। जब हार्मोनल इफेक्शंस होते हैं, जैसे भी हम सब बात ही करने लगातार इस प्रोग्राम में, तो कहीं ना कहीं वो हार्ट के ऊपर आपका प्रेशर देता है, अननेसेसरी एक स्ट्रेस देता है। तो अगर हार्ट की कंडीशंस को हम पहले ही लेवल पे, मतलब प्रिवेंटिव लेवल पे, अगर हम इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, तो हम काफ़ी हद तक दिल के ऊपर आने वाले जोर या परेशानियाँ हैं उनको रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर तरुण, हेल्दी हार्ट की ये हमें ऐसा क्या लाइफस्टाइल है जो अपनाना चाहिए, क्या खाएं, क्या ना खाएं, और क्या अवॉइड करें?
0: जी, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए 24/7 काम करता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका स्पेशल ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं उसका ध्यान रखें, जो आप प्लेट में क्या ले रहे हैं स्पेशली, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, तो आपको आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको प्रॉपरली कार्ब्स कम लेने हैं, फैट्स कम लेने हैं, प्रोटीन इंटेक थोड़ा बेटर लेना है आपको। कोशिश करें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं या तली हुई चीज़ें हैं वो ना खाएं आप। कोशिश करें वेजिटेबल्स लें आप, रेड मीट का सेवन कम करें आप, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक पोर्शन साइज मैटर करता है। तो जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, सबसे ज़रूरी है बैलेंस डाइट होना। तो उस बैलेंस डाइट में आपका शुगर कम होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए। जो आप जंक फूड खाते हैं कोशिश करें वो ना खाएं, क्योंकि जैसे चिप्स हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, या तली हुई चीज़ें हो गई।

0: नहीं, समोसा, जलेबी, कचौरी, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि ट्रांस फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही आपकी बॉडी में जाके करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपने कैलोरी इंटेक कम कर लिया, कोलेस्ट्रॉल इंटेक कम कर लिया, तो आपका वेट भी ठीक रहेगा। तो आपको वेट अपना कंट्रोल करके रखना है, चाहे वो डाइट से करें या एक्सरसाइज से करें। अगर वेट कंट्रोल कर लिया तो एक सेकेंड रिस्क फैक्टर्स आपका कम हो गया। डाइट और एक्सरसाइज आपने शुरू कर दी तो जो आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं, और उसके लिए आप एक्टिव भी रह सकते हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको आपको छोड़ना है, तो आपको एक्टिव रहना है। जैसे कि आपको 30 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग डेली करते हैं, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक, तो वो भी सफिशियंट रहती है आपके लिए। फोर्थ की, जो अगर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से, उसको आप कंट्रोल करके रखें। स्ट्रेस स्ट्रेस ना करें, या उसके वे आउट ढूंढें, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, और कोशिश करें कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आपकी प्लाक रप्चर को या और मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एनहेंस करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको कंट्रोल करने हैं, और कोशिश करें कि अगर कहीं ना कहीं आप ऐसी सिटी में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो आप उसका पार्टनर बने, प्लांटेशंस करें, और कोशिश करें कि व्हीकल को डिकंजेस्ट करें या और मेजर्स करें कि जिससे सिटी थोड़ी सेफ हो सके।
1: डॉक्टर श्वेता, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: मैसेज यही है कि हेल्दी हार्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, मोबाइल रहें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जितना हो सकते हैं एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जो भी आपका मन करता है, मतलब मैं तो ये एडवाइस देती हूँ बींग अ फिजियोथेरेपिस्ट कि एक जगह पे ज़्यादा देर ना बैठे, मूवमेंट करें, वॉक करें। जितना आप हेल्दी रह सकते हैं, खुश रहेंगे, बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, बहुत सारे फैक्टर्स, गुड हार्मोन्स जनरेट होंगे, तो आपका हार्ट और जो आपकी बॉडी है वो हमेशा अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर तरुण, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जी, एक हार्ट मैंने जैसे कहा है कि ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए दिन रात काम करता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटा करना है। तो हार्ट क्या बोलता है आपको कि मैं आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए 1 घंटा निकालें जिसमें आप प्रॉपरली एक्टिविटी करें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, एक्सरसाइज करें और अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। अगर आप फिट रहेंगे तभी आपका हार्ट भी फिट रहेगा।
1: श्रोताओं, आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, दिल की बीमारी में समय बहुत कीमती है। सही समय पर पहचान, सही जांच और सही इलाज कई बार जिंदगी बचा सकता है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड मेदांता हार्ट सेंटर न्यू दिल्ली, और डॉक्टर श्वेता शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू।
1: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल ID है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में एक नए स्वास्थ्य विषय और नई जानकारी के साथ। जाते जाते बस इतना कहूंगी, दिल का ख्याल सिर्फ बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले भी रखना जरूरी है। स्वस्थ दिल, खुशहाल जिंदगी। अपना और अपनों के दिलों का ख्याल रखिए और अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभ आरंभ करेंगे। सम्मेलन में 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न के सम्मानित M.S. सुबुलक्ष्मी की जयंती है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका और वक्त हो गया है आपके अपने शो अल्फा जन का। और आज का अल्फा जन होने वाला है थोड़ा और खास, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टूडियो में बैठकर कॉलेज लाइफ की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपको लेकर चलेंगे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज के कॉरिडोर्स, कैंपस की एनर्जी, स्टूडेंट्स के सपने, उनके करियर प्लान्स, उनकी चॉइसेस और वो सवाल जो आज की यंग जनरेशन के माइंड में कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है, आज सुनेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स की जुबानी। तो अगले कुछ वक्त में हम करेंगे एक छोटा सा डीयू कैंपस का टूर थ्रू आकाशवाणी एफएम रेनबो, आवाजों के जरिए, कॉन्वर्सेशंस के जरिए और ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रेट म्यूजिक के साथ। लेकिन उस सफर की शुरुआत से पहले वक्त हो गया है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं ज्योतिका मिलूंगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद चलेंगे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिलहाल सुनिए हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। आई विल बी राइट बैक।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।

जी हाँ, आज के हालात में हर इंसान दो चेहरे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और इसी वजह से किसी पर भी विश्वास करना नामुमकिन सा होता जा रहा है।

0: और दोस्तों, इस दोहरे चरित्र के कारण सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो है महिलाएं। क्योंकि महिलाएं कभी रिश्ते की खातिर तो कभी परिवार के लिए अपनी आंखों को बंद करके भरोसा करने के लिए हो जाती हैं मजबूर। दोस्तों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कौन है इसका जिम्मेदार, आइए सुनते हैं कुछ लिसनर्स से।
1: बबीता राव है, मैं गोसाईगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मानना है कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भी सभी लोग जिम्मेदार हैं। जिनको लगता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती हैं, और जिनको वो प्रताड़ित करते हैं किसी न किसी रूप में, लाइक मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते रहते हैं, तो मैं इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकती हूँ कि वो टॉर्चर करते हैं। इसके लिए तो पूरा समाज ही रहता है। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी महिलाओं के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति। अगर कुछ समाज में बदलाव लाना है तो इसके लिए हमें अपनी सोच पहले बदलनी होगी। और इसके लिए मैं बस कुछ दो ही तीन शब्द कहना चाहूंगी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंड। बंधे रहें संस्कारों से, आजाद रहें विचारों से।
2: मेरा नाम है रोशनी रावत और मैं उन्नाव से हूँ। औरतों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारी सड़ी गली सोच और ढीला सिस्टम और समाज का गलत रवैया जिम्मेदार है। सबसे बड़ा सामाजिक चुप्पी जो है कि घरेलू हिंसा हो या उत्पीड़न जैसी घटनाओं को एक पारिवारिक मामला मानकर दबा देना और पीड़ितों का समर्थन ना करना, समाज में पुरुषों को श्रेष्ठता और महिलाओं को कम आंकने की पुरानी सोच हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देती है। बस यही कारण है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं।
3: भोली रोड नियर सैरपुर चौराहा से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सबसे पहले अत्याचार करने वाला जिम्मेदार है। लेकिन केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वह समाज भी जिम्मेदार है जो अन्याय को देखकर चुप रहता है। आज भी कई जगह महिलाओं को भेदभाव, हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण गलत सोच, अशिक्षा और महिलाओं को कमजोर समझना है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा देनी होगी। परिवार और विद्यालयों को बच्चों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। यदि हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज बनाया जा सकता है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, महिलाओं का सम्मान समाज का सम्मान है।
0: जी हाँ, जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है उस परिवार की महिलाएं उस परिवार को खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ आज के विषय पर क्या विचार रखती हैं, जानेंगे इस गीत के बाद। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

ये जो गीत है, अगर बेवफा तुझको पहचान लेते तो खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। एक और गीत

है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जैसे कि आपने इन दो गीतों के बोल सुने, इस तरह की कहानियां बहुत सारी हमारी लड़कियां और महिलाएं जो हमारी श्रोता हैं, बहुत वर्षों से वो हमें अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें बताती हैं जिस पर ये दोनों गीत बिल्कुल फिट बैठते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको धोखे होते हैं, वो विश्वास जल्दी कर लेती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके घर का वातावरण उनका दम घोटता है, तो जो भी बाहर का मनुष्य एक बार उनसे प्यार से बात कर लेता है, वो बिल्कुल उस पर भरोसा कर लेती हैं। जी हाँ, और फिर कहते हैं ना, बाद में पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या फायदा। हमारी बहुत सारी स्कूल गर्ल्स हैं और वो हमें बताती हैं फोन करके हमारे काउंसलर को कि हम जो भी कुछ शिक्षा इस रेडियो कार्यक्रम के द्वारा देते हैं, वो उन सब बातों को अपनी कॉपी में लिखती हैं, जैसे कि मानो वो एक क्लास अटेंड कर रही हैं। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं वो इसलिए कर रही हैं ताकि वो उसको बार बार पढ़ें और स्वयं को याद कराएं, ताकि वो अलर्ट रहें, सतर्क रहें और इस तरह के धोखे में वो ना आएं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा, घरेलू हिंसा की जाती है, जिसके कारण वो मौके ढूंढती हैं घर से भाग जाने के। बहुत ज़रूरी है कि उनके घर में एक ऐसा सकारात्मक एनवायरनमेंट हो, ऐसे घर की परिस्थिति हो कि चाहे वो माता पिता हों, चाहे पति और सास ससुर हों, वो माहौल इतना सकारात्मक हो कि लड़की घर से भागने की ना सोचे। क्योंकि जब लड़की घर से भागने की सोचती है, तभी वो बाहर वाले लोगों के शिकार में आसानी से फंस जाती है। तो प्रिय श्रोता, इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको यही बताना चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं आपके घर की रौनक हैं, जो पत्नियां हैं उनको आपके बहुत सपोर्ट की, सहानुभूति की, प्रेम की आवश्यकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता है और जैसे दिशा फाउंडेशन 16 साल से यही शिक्षा दे रहा है, यही प्रोत्साहित कर रहा है परिवारों को, लड़कियों को, महिलाओं को, कि हम सबके साथ अच्छी तरीके से पेश आएं, ताकि हम सबको प्रोत्साहित करें, सशक्त करें और एक सुनहरे समाज की सृष्टि

0: इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन लोगों को भी सतर्क करना चाहते हैं जो भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको धोखा देते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जिनको धोखा होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता गर्भपात के विषय में। बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो गर्भपात की गोली खाती हैं और गोली खाने के पश्चात उनके जो परिणाम होते हैं शारीरिक मानसिक वो बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं और पूरे जीवन भर वो पीड़ा की शिकार रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो आसानी से धोखे में आ जाती हैं, किसी की बातों पे विश्वास कर लेती हैं, तो वो स्वयं अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलाती। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने श्रोताओं को यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको राय लेनी है, अगर आपको किसी बात का शक हो रहा है, तो आप बेझिझक हमारे काउंसलर से फोन पर बात कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपके साथ हैं। हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है आपको सही दिशा दिखाना ताकि आप सुखी और संपन्न जीवन जी सकें।
1: जी हाँ, इस जीवन को अगर खुशियों भरा बनाना है और ईश्वर की आशीषों से उसे महकाना है तो परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना नारी की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, नारी की इज्जत और उनके अधिकारों का सम्मान करने वाले पुरुषों के कदमों को कामयाबी क्यों चूमती है, जानने के लिए आप हमें 7678438471 पर फोन या मैसेज जरूर करें। और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप 7678438471 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा।

0: अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
4: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक, और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगी। मैं हूं ज्योतिका और अब वक्त है अल्फा जेन का, क्योंकि अब वक्त है स्टूडियो से निकलकर सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने का। और वहां से हमारे साथ जुड़ने वाली है मेरी फेलो कलीग आरजे माला नेगी, जो इस वक्त मौजूद है दौलत राम कॉलेज में। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा माला के पास और उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त वो कॉलेज में कहाँ है और कैसा माहौल है वहाँ। माला, ओवर टू यू, बताइए।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ दौलत राम कॉलेज के फ्रंट लॉन में और मेरे साथ है कुछ हाईली क्रिएटिव गर्ल्स। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कॉन्वर्सेशन में। आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कहते हैं आजकल की लड़कियों के बारे में, जब उनको कहा जाता है कि चाहे कितना ही पढ़ लिख लो, घर संभालना जरूर आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, ये सोच प्रैक्टिकल है या ये सोच पुरानी है?
2: मेरा नाम मिहिका है और मैं साइकोलॉजी ऑनर्स की एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि घर संभालना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता और ये सर्वाइवल स्किल है, खाना बनाना, और हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल है और मुझे लगता है कि सिर्फ औरतों को नहीं, सबको, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर संभालना, तो उन सबका काम होना चाहिए।
3: तो मेरा नाम अदीबा सत्या है, मैं लाइफ साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर। एंड आई फील लाइक वट एवर मीका सेड इज वेरी ट्रू, कि ये जो है ये बहुत लॉजिकल थिंकिंग है और ये बहुत बेसिक चीज है, और आई थिंक इसको जेंडर के हिसाब से डिवाइड नहीं करना चाहिए कि सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड नो अबाउट एंड सबको ये चीज आनी चाहिए।
4: ओके, मेरा नाम भव्या है और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की छात्रा हूँ, थर्ड ईयर। मेरे टीममेट्स ने सही कहा है, जब हम इस चीज को एक जेंडर से कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ी पेट्रियार्कल थिंकिंग ले आते हैं, थोड़ी पिछली सोच, और हम 21st सेंचुरी के हैं तो हमारे यहाँ पे ये सब सोच अब रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अगर कोई लड़की हमें दिखे एंड बहुत अच्छा खाना बनाती है तो हम उसको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी माँ बनेंगी, लेकिन अगर कोई लड़का अच्छा खाना बनाता है तो हम उसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे शेफ बनेंगे। तो हम उसको हमेशा एक इस वे में डालते हैं कि औरतें एक अच्छी केयरर है, अच्छी नर्चर है, तो वो चीज हम थोड़ा उसको पेट्रियार्की बना देते हैं ऑब्वियसली।
5: मेरा नाम गर्यशी कश्यप है और मैं सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर स्टूडेंट हूँ। आई अग्री विद व्हाट भव्या सेड एंड आई वुड ऑल्सो से कि जब हम ये जरूर वर्ड ऐड करते हैं तो एक सपोज एक वर्किंग वुमन, शी वर्क्स एंड देन व्हेन दिस जरूर वर्ड इज एडेड तो उनपे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है दैट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग फॉर द फैमिली वो शी ऑल्सो हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। तो उन पर डबल बर्डन आ जाते हैं, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है एंड इसके वजह से कभी कभी उनके ड्रीम्स एंड प्रोफेशनल करियर में भी हिंड्रेंस आ जाती है। एंड इसी जरूर वर्ड के लिए बहुत औरतों को अपने करियर को छोड़ना पड़ता है। तो दिस जरूर वर्ड इज वेरी इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर बोथ जेंडर्स बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ मेन एंड इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द ड्रीम्स ऑफ वुमेन।
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन, बहुत ही दिल से निकली हुई बातें आज आपने शेयर की और ये जानने में मदद की कि आज की महिलाएं आज की सिचुएशन पर अपने क्या विचार रखती हैं। थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू।
0: सही बात, आज की महिला, आज की जो इस पीढ़ी की सोच है वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। दोस्तों, अल्फा जेन में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आ रही ये कॉन्वर्सेशंस सुनते हुए एक बात तो अच्छे से क्लियर है, कॉलेज लाइफ सिर्फ क्लासरूम्स, लेक्चर्स और असाइनमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती। यहीं पर स्टूडेंट्स अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, नए इंटरेस्ट डिस्कवर करते हैं और कई बार वही इंटरेस्ट आगे चलकर उनकी पहचान बन सकता है। और कॉलेज की बात हो, म्यूजिक का जिक्र ना हो, एफएम रेनबो पर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार फिर से सीधा चलते हैं माला के पास। माला, दौलत राम कॉलेज में म्यूजिक को लेकर स्टूडेंट्स का कैसा जोश है, आप ही बताइए।
1: अभी मैं हूँ दौलत राम कॉलेज के एम्फी थिएटर में और मेरे साथ है यहाँ की इंडियन म्यूजिक सोसाइटी अलहिया की मेंबर्स। अलहिया म्यूजिक सोसाइटी खास तौर पर एफएम रेनबो के लिसनर्स के लिए अपनी तरफ से बेहद खास प्रेजेंटेशन लेकर आई है, तो आइए इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय करते हैं।

0: बहुत ही खूब, ऐसा लगा शायद मैं भी वहीं बैठी हूँ और वहीं पर ये लाइव परफॉर्मेंस देख रही हूँ। फ्रेंड्स, अल्फा जेन के इस कैंपस सफर में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट और हर चॉइस के पीछे एक अलग कहानी होती है, और यंग माइंड्स क्या सोचते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे देखते हैं, ये जानना हमेशा इंटरेस्टिंग तो होता है ना। तो चलिए कैंपस में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माला, सुना है आपके आसपास कुछ साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी मिलवा दीजिए। ओवर टू यू।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ दौलत राम कॉलेज में और मेरे साथ है दौलत राम कॉलेज की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स। सवाल आपसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपकी साइकोलॉजी को पढ़ने में मुझे मदद करेगा वो ये है, अगर एक दिन के लिए आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो कॉलेज का कौन सा ऐसा रूल है जो सबसे पहले बदलेंगे आप?
2: हाय, माय नेम इज दिव्यांशी और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। सो बेसिकली कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, बट जैसे हमारा कॉलेज जो है वो जैसे अभी रिसेंटली काउंसलर लेकर आया है, तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटर्स और लाने का कोशिश करूंगी।
3: हेलो, मेरा नाम है उर्जिता काद्यान, आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आई विल ट्राई टू मेक शेड्यूल मोर फ्लेक्सिबल फॉर स्टूडेंट सो दैट दे कैन हैव टाइम फॉर देयर ओन एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन मोर थिंग्स एंड वर्क ऑन देमसेल्फ।
4: हाय, माय नेम इज विनीता एंड आई एम अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट दौलत राम कॉलेज एंड आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो द रूल दैट आई वुड लाइक टू चेंज वुड बी दैट यू नो देयर मस्ट बी अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन teachers and also students. There should be more open communication about policies in the college and the department itself.
5: Hello, my name is Riyanshi. I am from third year psychology department से. So अगर मुझे मौका मिले to be a principal for one day, one rule that I would like to change is basically जो attendance होती है उसके लिए there's a marks का criteria. So that I would like to change because जब भी कॉलेज आते हैं स्टूडेंट्स फिर अगर अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं तो दैट बिकम्स द सोल क्राइटेरिया कि हाँ वो अटेंडेंस के मार्क्स के लिए आता है, एज इफ वो एक बेट दे रहे हो स्टूडेंट्स को लाने के लिए, रादर देन एक्चुअली कुछ ऐसा क्लासेस एंड ऑल दैट स्टूडेंट्स विलिंगली वॉन्ट टू कम बट नॉट फॉर अटेंडेंस वाला चीज। सो दैट इज वन।
1: थैंक यू सो मच।
0: कभी कभी ये छोटे उस्ताद भी कितनी डीप कॉन्वर्सेशंस कर लेते हैं ना हमारे साथ। देखो इन्होंने कितनी अच्छी टिप दी कि अटेंडेंस को बस हाजिरी से मत जोड़ो, मतलब उसको एक क्लिक बेट टाइप ऑफ चीज से ना जोड़िए। फिलहाल आप सुन रहे हैं अल्फा जेन विद मी ज्योतिका और वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, क्योंकि म्यूजिक के बिना हमारी जर्नी अधूरी है। आप सुन रहे हैं अल्फा जेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज का सफर अभी यहीं पर जारी रहेगा।

0: दोस्तों, कॉलेज कैंपस की असली एनर्जी तो तब फील होती है जब क्लासरूम से निकलकर हम स्टूडेंट्स के टैलेंट्स और उनकी क्रिएटिविटी से रूबरू होते हैं। और दौलतराम कॉलेज में आज हमें ऐसी ही बहुत सारे यंग टैलेंटेड फेसेस मिल रहे हैं। अब देखते हैं कैंपस में घूमते घूमते माला की मुलाकात किनसे हुई है। माला, ओवर टू यू।
1: तो अभी मैं हूँ दौलतराम कॉलेज की अनहद सोसाइटी की वंडरफुल परफॉर्मर्स के बीच, और ये यहाँ की इंडियन डांस सोसाइटी है। इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन अभी हमारे आज के इस रैपिड फायर राउंड को कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं ये देखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर इनके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। सो विल स्टार्ट फ्रॉम यू।
2: हाय, आई एम तान्या सचदेवा।
3: हाय, मैं रितोजा मोइत्रो एंड आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर जूलॉजी डिपार्टमेंट।
4: हाय, आई एम अक्षता, फर्स्ट ईयर एंड अ प्राउड मेंबर ऑफ अनहद।
5: हाय, आई एम अपूर्वा रॉय, आई एम फ्रॉम द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट।
1: रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, सेटल्ड मैरिज या स्ट्रगलिंग करियर?
5: Struggling career for sure.
4: Oh, same question. Of course, struggling career.
1: Okay. Nobody is interested for marriage. Settled marriage के लिए कोई तैयार नहीं है.
6: Struggling career.
1: Okay.
6: Struggling career.
1: पापा या मम्मी?
6: पापा.
1: Okay.
6: मम्मा.
1: Okay.
6: पापा.
1: Okay.
6: मम्मा.
1: Okay. Next question. Cinema या social media?
5: Cinema for sure.
4: Social media.
1: Okay.
6: Cinema.
3: Social media.
1: क्यों?
3: क्योंकि सोशल मीडिया में आपको मतलब बहुत एक्सपोजर मिलती है, और आपका आपके अंदर जो टैलेंट है, कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैं बहुत एक छोटी जगह से हूँ, थोड़ा सा एक रूरल साइड से हूँ, सोशल मीडिया हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे अंदर अगर कोई टैलेंट है उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक, डांस, ये सब जो कला है, ये अगर ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे तो इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता। ऑडियंस ही हमारे एक वो मीडियम है जिससे हम हमारे जो टैलेंट है, हम जिसकी साधना कर रहे हैं, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं इतने सालों से, वो ऑडियंस तक पहुंचे, वो लोगों तक पहुंचे, तभी इस कला की जो महत्व है वो और भी बढ़ जाते हैं।
1: साड़ी या जीन्स?
6: साड़ी, डिपेंड्स ऑन द ओकेशन।
1: लेकिन फिर भी जनरली आपको क्या वेयर करना ज़्यादा पसंद है?
6: जीन्स।
1: जीन्स क्यों?
6: इट्स मोर कम्फर्टेबल एंड डेली जो हमें काम वाम करने होते हैं, आई बिलीव मैं नहीं कर पाऊंगी रोज साड़ी में काम इतना जितना मुझे चलना वरना होता है। सो
4: इट्स साड़ी फॉर मी एनी टाइम।
1: क्यों भाई, क्यों तुम नए जमाने की हो? शायद आलिया भट्ट वाला ट्रेंड फॉलो कर रही हो?
4: नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट वो एलिगेंट वाइब जो एक साड़ी दे सकती है ना, आई थिंक वो जीन्स नहीं दे पाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट की दिक्कत होती है काम करने में, तो आई फील लाइक कि अगर मैं उस चीज के यूज टू हो जाऊंगी बस, सो आई विल बी एबल टू मैनेज दैट।
1: क्या बात है, वेरी गुड।
5: जीन्स फॉर मी, बिकॉज मैं साड़ी पहनने के इतने अकस्टम्ड भी नहीं हूँ, तो इसलिए।
1: अच्छा, कई बार लोग ये भी कहते हैं ना कि मुझ पे साड़ी अच्छी भी नहीं लगेगी।
5: नहीं, वो बात नहीं है, बट क्या होता है ना, आजकल के टाइम में आदत नहीं होती है लोगों को, एंड इट बिकम्स अ कंफर्ट वैल्यू कि मोर अप्रोचेबल चीज जो है साड़ी में, वैसे भी ज्यादा एफर्ट लगता है ऑन एन एवरीडे बेसिस, तो बहुत बार मुश्किल हो जाती है फॉर पीपल टू कैरी आउट वेयरिंग अ साड़ी।
1: ओके, क्रिकेट या खो खो?
5: आई एम नॉट इन टू स्पोर्ट्स इफ दैट इज वैलिड, बट इफ आई वाज टू से देन प्रोबेबली क्रिकेट।
4: I think I agree to her because I'm not a sports person. But if I have to choose, then cricket, because it's something I like more than khokho, I guess.
6: Same, cricket.
1: Okay.
6: Cricket.
1: Thank you so much. आज के इस रैपिड फायर राउंड का हिस्सा बनने के लिए और अपने दिल की बातें हमारे सामने खुलकर जाहिर करने के लिए. Thank you.
6: Thank you.
0: अल्फा जेन में आज हम कैंपस लाइफ के कई रंग देख रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना कि ये जो गर्ल्स थी दौलतराम कॉलेज की, वो आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। माला, बहुत अच्छा लगा, हमें अपनी चॉइसेस हमारे तक पहुंची हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉलेज का ये जो फेज है, वैसे भी बड़ा ही खास होता है ना, मतलब नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज और अपने फ्यूचर को धीरे धीरे शेप करने का वक्त मिलता है। और आज दौलतराम कॉलेज से इसी यंग एनर्जी को हम और करीब से जान रहे हैं। थैंक यू टू यू माला। तो चलिए एक बार फिर रुख करते हैं माला की तरफ और देखते हैं अब वो हमें कैंपस के किस नई कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाती हैं। बताइए जरा।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ दौलतराम कॉलेज में और मेरे साथ है दौलतराम कॉलेज की वेरियस सोसाइटी की बहुत सारी स्टूडेंट्स। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल की लड़कियां सबसे ज्यादा किन बातों को लेकर कंफ्यूज हैं।
7: मेरा नाम ईहा गौतम, आई एम अ थर्ड ईयर फ्रॉम साइकोलॉजी ऑनर्स एंड आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन म्यूजिक सोसाइटी अलहैया. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कन्फ्यूज जिन चीज़ों को लेकर रहते हैं गर्ल्स, आई थिंक नाउ इन टुडेज़ टाइम सबसे पहले तो आर प्रायोरिटीज आर आर करियर्स एंड हाउ टू सेटल डाउन इन टू दैट एंड जस्ट ऑल्सो फिगरिंग आउट आर ओन पर्सनैलिटीज एंड आर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल ट्रेट्स ऑफ आर सेल्व एज वी बिकम यू नो अडल्ट्स. तो वो अडल्टिंग का पार्ट है. आई थिंक अडल्टिंग इज अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन एंड अ वेरी ह्यूज I would say something that we want to look into. So, बहुत concerned रहता है वो हमारी age की girls का. Yeah, I would say that.
8: Okay. So, hi, I am Divyanshi. I am from second year from economics department, and I am the management head of Spectra, the fine arts society. I feel like career को ही लेके mostly confused हैं कि क्या करना है, and it's just like सब लोग अपना figure out कर रहे हैं कि who they are actually and what they want to become. So, it's just like that.
9: Okay.
10: Hello, I'm Ishita and I'm the president of Spectra, the Fine Arts Society, and I'm from psychology third year, and I believe recently career ko leke to hai hi tension, but saath mein safety ko leke bhi thodi tension rehti hai ki kahan pe hum safe reh sakte hain, kahin settle down hona hai hame, kahin naya ghar lena hai, to wo dekhna padta hai ki aapko kahan pe safety mehsoos hogi aur kahan pe aapke facilities bhi bahut near honge.
11: Okay, so hello, I'm Shreya and I'm from political science honors. I'm in third year and I'm the co-president of Spectra, the Fine Arts Society of Dolat Ram College. I guess अभी इतना changing world चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे पास इतनी सारी opportunities हैं अब. I am happy to say that लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें जो पहले available नहीं थी अब मिल रही हैं. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लड़कियाँ थी जो पहले जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी. मैं भी एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ एंड आई नो द कंडीशन ऑफ वुमेन देयर. दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी फर्दर, दे आर नॉट अलाउड टू परस्यू मास्टर्स, दे आर सेट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 20. सो आई एम फॉर मी कि लड़कियों के लिए बहुत वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर एंड हाउ टू सेटल फॉर समथिंग एंड हाउ टू गेट समथिंग ऑफ देयर वेरी ओन. लड़कियों के लिए बहुत इशू होता है कि क्या मेरा खुद का है. आई फील वो उनकी खुद की बिलोंगिंगनेस किसी चीज़ की होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लड़कियाँ आजकल, मेरे को लगता है एवरीवन इज़ वेरी डिटरमाइंड टू गेट समथिंग ऑफ देयर वेरी ओन, जिसको वो कह सके कि ये सिर्फ मेरा है, इस पे ना मेरे घर वालों का हक है, ना मेरे, अगर मेरी कल शादी हो जाती है तो मेरे इन लॉज का हक है, मेरे हस्बैंड का हक है, इट इज़ ऑफ मी.
9: आपसे जानना चाहेंगे, जैसे श्रेया ने कहा कि वो बहुत छोटे शहर से हैं, तो इसलिए वहाँ पर इश्यूज वो हैं जो वाकई बड़े हैं. शहर की लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें कहा जाता है, वो तो इस बात पे कंफ्यूज हो जाती हैं कि आज पीला पहनूं या नीला पहनूं.
12: आई एम रितु फ्रॉम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड अ मेंबर ऑफ फाइन आर्ट सोसाइटी स्पेक्ट्रा. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मेरे सीनियर्स ने कहा कि एरिया का इशू पड़ता है. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसा तो कोई इशू नहीं हुआ है, बट आई थिंक इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो हैव योर ओन ओपिनियन कि आपको क्या चाहिए या क्या आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज में, ताकि कोई आपकी वॉइस को दबा ना सके. तो आई थिंक इट्स इवन इफ समवन मेक फन ऑफ यू, यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम्हें क्या चाहिए. किसी की बोलने से अपना ओपिनियन मत चेंज करो. आई थिंक दैट्स अ स्टीरियोटाइप कि गर्ल्स को सिर्फ ये डाउट है कि आज पीला पहने या नीला. एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू. जैसे गर्ल्स को ये भी डाउट है कि आगे करियर में क्या करना है, ये जॉब करनी चाहिए या ये, इस सिटी में जाना चाहिए या, बहुत सारे डाउट्स हैं जो लोगों को शायद स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि गर्ल्स को सिर्फ मेकअप करना है या क्लोथिंग का, बट ऐसा कुछ नहीं है. आजकल फीमेल्स भी काफी आगे बढ़ रही है हर चीज में, तो आई थिंक ये एक रॉन्ग स्टीरियोटाइप है.
9: Okay.
13: Hello everybody, I am Aditi and I'm currently in my third year pursuing BCom honors here and I'm the vice president of the Indian Music Society Alaiya. So as you said ki chote शहर से आने वाली लड़कियों के पेरेंट्स को भी, उनको भी खुद से वो डाउट होता है कि क्या वो बड़े शहर में जाके टिक सकती हैं, क्या वो कितना डिफिकल्ट होगा, इज इट गोइंग टू बी स्ट्रगलिंग और नॉट. सो कमिंग फ्रॉम, आई कम फ्रॉम अ टियर टू सिटी, ऑल्दो मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस नहीं की थी. माई पेरेंट्स आर प्रीटी प्रोग्रेसिव, दे अंडरस्टैंड, बट मैंने वो सोसाइटी देखी है समवॉट, जहाँ पे लोग क्वेश्चन अभी भी मेरे पेरेंट्स को कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपने दिल्ली क्यों छोड़ा, मतलब यहाँ पे भी तो कोर्सेज हैं, मतलब दिल्ली ही क्यों. बट स्टेइंग हियर सिंस द लास्ट टू इयर्स, आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज certainly helped me developing my own personality of being independent on my own. Like I have the trust कि अभी अगर मुझे कहीं भी छोड़ दिया जाए तो I would be able to survive on my own.
14: Hi, my name is Pavni Srivastav. I am pursuing BA Honors Economics and I'm in the first year. I'm a member of Spectra, the Fine Arts Society. Personally, मैं मेरी खुद की बात करूँ, which I think would represent a lot of us too. So, एकदम ही secure family environment से एकदम अकेले Delhi में shift होना, figuring out things on your own, जो तुम पहले अपनी family के साथ या किसी adult के साथ करते थे, so that is a very big thing, basically a part of adulting only.
15: Hello, my name is Ritika. I'm from Political Science Department. I'm the Modeling Head of Debonair, the Fast Society of DRC. Yeah, it takes a lot of you, a part of you, to figure out everything on your own suddenly.
16: Hello everyone, I'm Ritika. I'm the PR Head of Debonair. I'm from BCom Honours in second year. I think we girls are confused about careers and our life choices. So I think if as a girl, if I am also going out and studying or even doing a job or anything, going out from my parents' house, it already becomes like a responsibility on us to be successful and go back home. Because if we are not successful, a lot of parents say to their girls, their childs, that you have to be successful by this age. If you are not earning, you'll get married. Or you won't clear this exam, so you'll get married. So we have that confusion and we also have that pressure. Due to that pressure, we are so confused that which career should we choose and what are we supposed to do so that we excel in it.
9: थैंक यू सो मच इस लवली इंटरेक्शन के लिए. आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही. थैंक यू.
0: सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें करी हैं. कई बार तो ऐसा भी लगा कि शायद मैं भी इनकी बातों से कुछ सीख लूं. दोस्तों, अल्फा जेन में आज दौलतराम कॉलेज के सफर में हमने कैंपस की एनर्जी को महसूस किया. अलग अलग यंग वॉइसेस से रूबरू हुए और कॉलेज लाइफ के कई रंग हमें यहाँ दिखे. और किसी भी इंस्टीट्यूशन की कहानी उसकी लीडरशिप के नजरिए के बिना तो अधूरी सी लगती है ना. तो चलिए इस कैंपस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से चलते हैं माला के पास. ओवर टू यू.
9: CUET के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी वेलकम कर रही है पूरे भारत के स्टूडेंट्स को. गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करते हुए उन्हें समाज का एक बेहतर हिस्सा बनाने के लिए दौलतराम कॉलेज की स्थापना हुई. और आज अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के दौलतराम कॉलेज में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय मैम के साथ. मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
17: नमस्कार. नमस्कार.
9: आपको क्या लगता है आज के समय में लड़कियों को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनलर्न करने की जरूरत है?
17: इट इज ए एरा वेयर देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बट दे नीड टू फिल्टर आउट व्हाट इज द करेक्ट. That is, the knowledge has to be differentiated between the type of informations that are available in the social media all over, and they need to, you know, decide what is good for them, what is not good for them, and decide what they do is they decide for themselves. What they need to learn is they have to decide not only for themselves, their own family, for their country, because they are the ones who are going to take it forward.
9: जी,
17: the country.
9: जी. अब हम अगर बात कर रहे हैं, आप दौलतराम कॉलेज को हेड कर रहे हैं, being mother, आप के लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं और मदर की खासियत भी होती है कि वो अपने हर बच्चे पर इक्वल ध्यान देती हैं, चाहे उनके पास कितना भी समय कम क्यों ना हो. अगर हम बात करें सुविधाओं को लेकर, क्योंकि माँ तो ये चाहती है कि बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाएं, बच्चे बोले ना पहले मिल जाएं, लेकिन लिमिटेशंस हैं. लेकिन अगर आपको किसी अच्छे मोमेंट ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अनलिमिटेड फंड्स आपको अलॉट हो जाएं, तो आप कॉलेज में क्या क्या करवाएंगे?
17: देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा एकेडमिक ब्लॉक बनाया है. कम से कम ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है. 10-12 और क्लासरूम्स बन जाएं.
9: ओके.
17: मेरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, उसके लिए थोड़ी सी और स्पेस बन जाए.
9: ओके.
17: अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं, बच्चों के लिए एक बड़ा सा अच्छा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए. कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, लेकिन थोड़ा छोटा है. कंसिडरिंग 5,500 बच्चे हैं, अगर उनको जिम की फैसिलिटी भी चाहिए तो जिम है मेरे पास, लेकिन मैं जिम थोड़ा बढ़ाना चाहूंगी. अभी जिम में मुश्किल से 20-25 बच्चे आ जाते हैं, और हॉस्टल के तो बच्चों को मैं शाम को परमिट करती हूँ, वो भी परमिटेड हैं. अब अभी फैकल्टी की भी डिमांड है कि भाई हमें भी परमिट कीजिए, क्योंकि वो भी पूरे दिन कॉलेज में रहते हैं, तो उनके लिए भी चाहिए. तो मैं एक तो अच्छा सा स्पेस बनवाऊंगी जिसमें जिम आ जाए, बैडमिंटन इंडोर हमारी अच्छी प्लेयर्स आए हुए वो कुछ स्टार्ट हो जाए, शूटिंग रेंज बनवाना चाहती हूँ जिसके लिए मेरे पास परमिशन भी है अभी. तो स्पोर्ट्स में बढ़ाऊंगी, बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स का एरिया मेरे को बढ़ाना है. और साथ पढ़ाऊंगी हॉस्टल, जिसका प्रोविजनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग मेरे पास 213 का कैपेसिटी है.
9: जी.
17: मेरे पास 50 का ऐड करने का अप्रूवल NDMC से है, जो कि हम वी आर गोइंग अहेड. लेकिन थोड़ा सा ये भी है, सोच रही हूँ कि जितनी बच्चियों को रख सके.
9: जी.
17: तो हम 300 सीटर हॉस्टल एक बार और अभी प्लान करें, प्रपोजल बना रहे हैं, वो हम अभी सबमिट भी करेंगे. तो एक हॉस्टल बनाऊंगी, और इन सब चीजों के साथ मैं चाहूंगी कि कैंपस में बच्चों को वॉशरूम के अंदर वो भी थोड़ा अभी प्रोवाइड करती हूँ कि उनके टिश्यू पेपर्स हो, सोप हो, डिस्पेंसर हो, इंसिनरेटर मशीन, वेंडिंग मशीन तो मेरे पास सब कुछ है
0: जी।
17: लेकिन थोड़ी सी बेटर क्वालिटी कर दूं, थोड़े ज्यादा कर दूं ताकि मतलब कमी ना हो स्टूडेंट्स को
0: जी।
17: और उसके लिए मैं काफी एनजीओस को भी लेकर के आ रही हूँ कॉलेज में, करवा रही हूँ
0: जी। मैम हमारे जो बच्चे हैं वो जब उनको कोई परेशानी होती है तो वो माँ बाप के पास ही आते हैं शिकायत लेकर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि दौलतराम कॉलेज के स्टूडेंट्स ने शिकायत की जो कॉलेज को लेकर, कॉलेज प्रशासन को लेकर, वो बिल्कुल सही शिकायतें करी, फेयरली क्रिटिसाइज किया, और जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये तो हम करते हैं, हम तो ऐसा और करते और करेंगे, हमेशा करेंगे।
17: देखिए दौलतराम कॉलेज कैंपस में है, नॉर्थ कैंपस में, एंड इट इज मोर ऑफ ए मतलब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ तो स्कूल की तरह क्लासेस होती है
0: जी,
17: तो बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम भी चाहिए होती है, स्कूल से कॉलेज में आए हैं तो कॉलेज लाइक फीलिंग होनी चाहिए
0: जी।
17: तो क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है और कोर्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो क्लासेस यहाँ पे मैं भी काफी सिंसियरली राउंड लेती हूँ और टीचर्स को भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि पूरी सिंसियरली पढ़ाएं, तो टीचर्स भी बच्चों को नहीं छोड़ती हैं अनलेस वो बच्चे कॉम्पनसेटरी क्लास उनको दे दें, या तो इस तरह से क्लास यहाँ बहुत टाइट रेगुलर होती है, तो इसके लिए वी आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड आई डोंट माइंड बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट बिकॉज आवर एम इज टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वी गिव देम इनफ फैसिलिटीज फॉर देयर एक्स्ट्रा करिकुलर activities and we have they have enough opportunity to showcase their talent. बहुत सारे events होते हैं जो कि कॉलेज में आते हैं मेरे पास proposals, मैं इनको देती भी हूँ participate करने के लिए and students are participating. बच्चों को national क्या international recognitions भी मिलती हैं, sports में भी है, हमारे पास 3 अर्जुन अवार्डीज हैं sports के अंदर और काफी सारे हमारे पास international stages पे dance और music performance करने वाले भी बच्चियां गई हुई हैं। फिर हमारे पास पेंटिंग के लिए अभी इस बार इशिता तोड़ी जो है हमारे कॉलेज से, शी विल बी रिसीविंग एन अवार्ड इन मॉस्को एंड शी इज गोइंग टू मॉस्को टू रिसीव दैट अवार्ड। तो स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड।
0: आप इसी तरह स्टूडेंट्स को एनकरेज करते रहें, स्टूडेंट्स इसी तरह से हर दिन बेहतर और बेहतर परफॉर्म करते रहें और दौलतराम कॉलेज का नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस इंटरेक्शन के लिए एंड थैंक यू सो मच रेनबो परिवार का हिस्सा बनने के लिए।
17: थैंक यू
0: सो मच माला। दोस्तों ये थी मेरी फेलो कलीग आरजे माला नेगी जो आज हमें दौलतराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से वहां की एनर्जी, यंग वॉइसेस और कॉलेज लाइफ के अलग अलग रंगों से रूबरू करवा रही थी। माला आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दौलतराम कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने अल्फा जेन के साथ अपनी बातें शेयर करी। और अब कैंपस की इस वंडरफुल एनर्जी को म्यूजिक के साथ आगे बढ़ाते हैं, सुनिए ये जबरदस्त गाना आकाशवाणी FM रेनबो पर। मैं हूं ज्योतिका।

और दोस्तों इसी के साथ आज के अल्फा जेन का सफर यहीं खत्म होता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से जुड़ी ये कॉन्वर्सेशंस, कैंपस की एनर्जी और यंग वॉइसेस आप तक लेकर आना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि कॉलेज और करियर का ये जो दौर है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन कभी कभी प्रेशर से भरा भी हो सकता है। ऐसे में पेरेंट्स का थोड़ा सा पेशेंस, उनका सपोर्ट और बिना जज किए अपने बच्चों की बात सुनना बहुत मायने रखता है। कभी कभी सोल्यूशन से पहले सिर्फ किसी का सुन लेना ही काफी होता है। इसी खूबसूरत थॉट के साथ मैं हूं ज्योतिका, अब आपसे लेती हूं इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इस निर्णय से सरकार का

0: और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने हमेशा बड़े विजन के साथ काम किया और सत्ता की चिंता किए बिना सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व वाले शहर मक्का के नजदीक ये घटना चिंताजनक है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उनहालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग HS1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। मोना को व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी को कांस्य पदक मिला। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has enhanced the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Addressing the media after the cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision significantly widens social security protection for workers.
3: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
2: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन टुडे कॉल्ड फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑन टैक्स पॉलिसी टू बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, सेइंग टैक्स प्रोफेशनल्स मस्ट लुक बियॉन्ड सेक्टोरल इंटरेस्ट्स एंड पुट द नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। The minister was speaking at the inaugural session of the two-day conference on New Age Taxation organized by the International Tax Research and Analysis Foundation in Bengaluru today. Delhi has been ranked as the top performer in states and union territories in electric mobility adoption as per the India Electric Mobility Index 2025. The index was released by the Niti Aayog in New Delhi today, which outlines

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी।

0: सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिनमियो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
3: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर।
2: The government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. The government has declared Pakistan-based Shahzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youth and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. The ministry said the decision was taken in keeping with Prime Minister Narendra Modi's vision of adopting a zero-tolerance approach towards terrorism. India has expressed deep concern at the drone attack near Makkah in Saudi Arabia. Responding to media queries regarding the drone attack, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the incident near Makkah is particularly concerning given the special significance of the city to Muslims across the world. The

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে মধুস্মিতা ৰাভাৰ কণ্ঠত ভজন শুনিলে খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: যতীনা শর্মা। आदौ मुख्य वार्ताः। करनीति चर्चायां राष्ट्रहितं प्रथमं इति सर्वोपरि निध्याय प्रौढविमर्शस्य आवश्यकता इति केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारामणस्य समाह्वानम्। अन्ताराष्ट्रिय जलक्षेत्रे पाकिस्तानीय नौसेना घटकानां अस्वीकार्य व्यवहारं विरुध्य भारतेन तीव्रापत्तिः प्रदर्शिता। नीति आयोगेन 25+2000 भारत विद्युत संचार सूचकांक प्रख्यापित। विद्युत वाहनानां अंगीकरणे नवदिल्ली शीर्षस्थाने, महाराष्ट्र कर्नाटक राज्ये च द्वितीय तृतीय स्थाने वर्तेते। सऊदी अरब देशेन हूथी विद्रोहिणां ड्रोन विमानं निरुद्धम्। भविष्यदाक्रमणानां विरोधे दृढ़ पदक्षेपाणां संचेतना। हुथी समूहेन आक्रमण वार्ता प्रत्याख्याता। अपि च हरियाणा राज्य चंडीगढ़े पंजाबे पूर्वोत्तर भारतस्य च कतिचित् भागेषु अद्य अति तीव्र वृष्टेः वर्तते पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः दृढ़तया प्रतिपादितवती यत् सर्वकाराय समर्प्यमाणेषु करसम्बन्धि प्रस्तावेषु मानांक न्यूनीकरणस्य करमुक्तेः सौविध्यप्रदानस्य च याचनायाः अपेक्षया राष्ट्रं प्रथमम् इति भावः सर्वोपरि स्थापनीयः। सा अद्य बेंगलुरुनगरे अन्ताराष्ट्रिय कर अनुसन्धान विश्लेषण प्रतिष्ठानेन आयोजिते नवयुग कराधान विषये द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे सम्बोधयन्ती आसीत्। मंत्री शिक्षाविदः शोधकर्तृन् चिन्तकाञ्च समाहूय स्वतंत्र करनीति संशोधनं सार्वजनिक संवादस्य नियमितं भागं कर्तुं आदिष्टवती। यस्य परीक्षणं समाह्वानं परिष्कारश्च

0: विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पञ्चमं संस्करणं उद्घाटयिष्यति। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं प्रमुखमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति, येन वैश्विक सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्युभौ मिलित्वा सहयोगं वर्धयितुं, नवान्वेषणं प्रवर्तयितुं, विनिर्माण क्षमतां सुदृढीकर्तुं, निवेशाकर्षयितुं, भविष्यस्य कृते सज्जानां प्रतिभानां विकासाय च कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे 600+ प्रदर्शकाः, 300+ अन्ताराष्ट्रिय संस्थाः, 50+ देशाः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रदर्शने जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्वीडन देशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः 6 देशाः, 12 राज्यसर्वकारस्य मण्डपानि, समर्पिताः स्टार्टअप मण्डपाः च दृश्यन्ते। सेमिकॉन इंडिया इति भारतस्य प्रमुखं सेमीकंडक्टर सम्मेलनं प्रदर्शनी चास्ति, यत् भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयेन सेमी इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। सऊदी अरब देशेन विज्ञापितं यत् गतरात्रौ मक्का नगर समीपे तदीयेन वायु प्रतिरक्षा तंत्रेण हुथी विद्रोहिणानां प्रेषितं एकं ड्रोन विमानं अंतराले एव निरुध्य विनष्टीकृतम्। यमन देशे वैधता समर्थक गठबंधनस्य सैन्यस्य प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी महाभागः घटनाम् इमाम मक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य हुथी विद्रोहिणानां द्वितीयः आक्रमण प्रयासः इति न्यरूपयत्, यत्र सः 17+2000 वर्षे क्षिप्तस्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रस्य पूर्वघटनायाः सन्दर्भम् अददात्। तेन सावधानता प्रकटिता यत् सऊदी नेतृत्वे कार्यरतः गठबन्धनः आगामि आक्रमणानां निवारणार्थम् आवश्यक कार्याचरणं विधास्यति। भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, अरुणाचल प्रदेशे, असमराज्ये, मेघालये, हरियाणायां, चण्डीगढ़ प्रदेशे, पंजाब प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। इति वार्ताः।
1: বাতৰিৰ পিছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যোগে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ একক চিনেমাৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটি। আজি একক চিনেমাৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটিত শ্ৰোতাসকলে শুনিবলৈ পাব কুচ কুচ হোতা হে চিনেমাখনৰ পৰা কেইটিমান সুমধুৰ গীত।

0: के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi today. He said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. Isse kareeb 51 lakh employees ko iska benefit milega, jo ki 15 to 25 wale band mein the, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर.
1: The government has declared Pakistan-based Shehzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued gazette notification in this regard. The ministry said the decision was taken in keeping with Prime Minister Narendra Modi's vision of adopting a zero-tolerance approach towards terrorism. The government has introduced an exemption from the requirement of registration cum membership certificate or certificate of registration for small value export consignments up to 3 lakh rupees. The Ministry of Commerce and Industry said the measure is aimed at reducing the compliance burden for new and small exporters and facilitating exports through postal, courier and other emerging channels. A special court of the National Investigation Agency at Jagdalpur in Chhattisgarh today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhiram Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. The attack took place on the 25th of May 2013 in Jhiram Valley in Bastar district, killing 27 people, including several senior Congress leaders, and injuring 35 others. The External Affairs Ministry today summoned the Charge d'Affaires of the High Commission of Pakistan in New Delhi and lodged a strong protest over the unacceptable conduct of Pakistani naval units at sea, which led to a collision with a unit of the Indian Navy. In a statement, the ministry said while the incident which took place in

দুঃখ কালিতে পশিমরে পড়া বং

0: बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने, चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास 1 सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे।

0: तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाइशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2-3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे रही। सुजीत कलकल ने वहां पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहां पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपेरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है, इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पुनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्रीस्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 केजी लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी

0: में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन काफी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेन्स ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेक सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेन्स स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे, अभिषेक इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है।

0: इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए, ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स है जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे। डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है। पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन वो काफी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि 2-3 है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफी बेहतर हुआ है, काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फायदा मिल रहा है, एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। पर हमारे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 केजी में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता, और जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूं तो यहां पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी, और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में, पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और

0: उनसे काफी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है।
1: बिल्कुल
2: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो, और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूंगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊं, गौरव बढ़ाऊं और वहां से मेडल लेकर आऊं।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्रोमेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगजोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 8:45ৰ পৰা সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
3: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रूपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रूपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
5: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
6: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया।
1: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और

0: सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।